FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है बृहस्पतिवार, शक संवत 1948, भाद्रपद महा 12वीं तिथि, तदनुसार 3 सितंबर सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साब बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है।

0: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है और कुल की रक्षा चरित्र द्वारा होती है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं। झरोखा में अब जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

उन कार्यक्रमों की जो हमारे केंद्र से दिन भर आपके लिए पेश किए जाएंगे। सबसे पहले समाचारों के बारे में बता दें, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी हम आपके साथ साझी करते हैं, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करते हैं। दस बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाते हैं। 10:05 पर सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। दिन में 11 बजे आज लक्ष्य कार्यक्रम आप सुनेंगे और लक्ष्य कार्यक्रम में पिछले सप्ताह आपने बातचीत सुनी अंतर्राष्ट्रीय कोच और खिलाड़ी विवेक ठाकुर से। उस बातचीत का दूसरा भाग आज के लक्ष्य प्रोग्राम में आप दिन में 11 बजे सुनेंगे। बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ ही रमेश कपूर। फरमाइश आपके कार्यक्रम में, आपकी फरमाइश पर फिल्मी गाने पेश किए जाएंगे दिन में 11:30 पर। बारह बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। दिन में 1:05 पर प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। और प्रादेशिक समाचारों का यही क्रम रहता है, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, दोपहर 2:15 पर, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे शाम 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम

हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, और इस कार्यक्रम के बाद आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो कार्यक्रम हमारे केंद्र से यानी आकाशवाणी चंडीगढ़ से दिन भर आपके लिए पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती मुंबई से कार्यक्रमों का सिलसिला भी जारी रहेगा। जैसे अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 बजे प्रोग्राम सुनिए हम है राही प्यार के,

0: 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर प्रोग्राम चित्रलोक। झरोखा में ये था लेखा जोखा हमारे आज के कार्यक्रमों का। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 300।

भयभीत सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम के समक्ष घुटने टेक दिए। अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा याचना करता हुआ बोला, हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये पांच तत्व स्वभाव से ही जड़ होते हैं। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वो उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। आप जैसा आदेश करें, मैं वैसा ही करूंगा। सागर का निवेदन सुनकर कृपालु श्री राम प्रसन्न हुए, बोले, तुम वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना पार उतर जाए। हे नाथ, वानर सेना में नल और नील ऐसे दो भाई हैं जिन्हें बचपन में ऋषि से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि उनके स्पर्श मात्र से भारी भारी पत्थर और पहाड़ जल में तिरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। अतः आप इनसे सेतु निर्माण कराइए और उस पार जाकर पापियों का विनाश कीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। श्रोताओं, श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। शकुंतला जी, आज की कड़ी में हम वो कौन सी विशेषता है किराना घराने की जिसके बारे में जानेंगे?
2: किराना घराने की विशेषता के बारे में तो हम बोलेंगे ही, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जयंत जी, संगीत का मुख्य अंग है स्वर और स्वर के साथ है लय
1: जी।
2: इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। स्वर संगीत की आत्मा है
1: जी।
2: स्वर के बिना संगीत की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यही राग की पहचान, भाव और सौंदर्य का आधार होता है।
1: बिल्कुल।
2: लय संगीत की धड़कन है। लय संगीत की गति, संतुलन और अनुशासन प्रदान करती है संगीत को
1: जी।
2: लय के बिना गायन प्रभावशाली नहीं हो सकता है ना
1: जी।
2: स्वर और लय का संतुलित समन्वय ही उत्कृष्ट संगीत की पहचान है।
1: बिल्कुल।
2: जब स्वर और लय का सुंदर मेल होता है तभी संगीत श्रोताओं के मन को एकदम वो स्पर्श करती है
1: जी। जी।
2: प्रत्येक घराने में स्वर और लय के प्रयोग की अपनी विशिष्ट शैली होती है और यही विशेषता प्रत्येक घराने को अन्य घरानों से अलग पहचान देती है।
1: अच्छा।
2: किराना घराने के बारे में अब स्वर प्रधान उसे माना गया है। इस घराने में स्वर की शुद्धता
1: जी,
2: जैसे मैंने बोल दिया आपको, श्रुति, उसका सूक्ष्मता, उसका जो सूक्ष्म प्रयोग जो हम करते हैं, मिंड पर विशेष बल देते हैं
1: जी।
2: जबकि लय का प्रयोग संयमित और राग के भाव के अनुरूप किया जाता है। इसीलिए वो मैंने बताया ना आपको, सुर गया तो सिर गया, ताल गया तो बाल गए। कहने का मतलब है लय से स्वर निर्माण नहीं हुई, स्वर से लय निर्माण हो गई, ऐसा ही हमें ग्रहित धरना पड़ेगा। स्वर और लय परस्पर पूरक है
1: जी।
2: फिर भी प्राधान्य तो स्वरों को ही जाता है।
1: बिल्कुल।
2: स्वर की सिद्धि नाद श्रुति से ही होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि नाद के बिना गीत नहीं।
1: बिल्कुल।
2: नाद के बिना स्वर नहीं, नाद के बिना संगीत नहीं और नाद के बिना जगत नहीं।
1: वाह वाह।
2: इसकी प्रचिति दिखाने के लिए कुछ तो सुनना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। लय और स्वर
1: जी,
2: इसके बारे में अगर आप सोचे, भारतीय संगीत में अग्रगण्य महत्व दिखाने के लिए परिपूर्ण गायकी जो है
1: जी, जी।
2: वो ग्वालियर गायकी के पंडित डीवी पलुस्कर, आपने तो सुना होगा उनका भजन वगैरह
1: जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
2: पंडित डीवी पलुस्कर स्वर प्रधान गायकी, शुद्ध मधुर स्वर और अत्यंत सुरीले स्वरों के कलाकार थे। स्वर और लय का संतुलन, स्वर के सुंदरता के साथ लय का साधा हुआ एक निर्वाह, भावपूर्ण गायन, बंदिश और भजन में शब्द के भावों की सुंदर अभिव्यक्ति, स्पष्ट तान, सीधी स्वच्छ और प्रभावशाली तान, ग्वालियर घराने की छाप, सरल

0: स्पष्ट और राग की शुद्धता पर आधारित उनका जो प्रस्तुतिकरण है।
1: जी जी, तो शकुंतला जी, उदाहरण स्वरूप जो पंडित डीवी पलुस्कर जी की रिकॉर्डिंग हम सुनने वाले हैं, वो किस राग की बंदिश है?
0: वो राग हमीर में है।
1: वाह वाह,
0: बहुत ही प्यारा राग है।
1: हाँ,
0: और बहुत ही अच्छी चीज है।
1: आइए सुनते हैं।

0: जयंत जी, अभी आपने पंडित देवी पलुस्कर का ये हमीर सुन लिया
1: जी, जी।
0: जिसकी गायकी तो ग्वालियर घराने की है।
1: हाँ।
0: अब ग्वालियर घराने के बाद किराना घराने का जो गाना है
1: जी,
0: उसके बारे में हमारे किराना घराने के विशिष्ट पहचान देने वाले जिसे हम प्रवर्तक कहते हैं
1: जी,
0: खान साहब अब्दुल करीम खान, ये किराना घराना के युग प्रवर्तक गायक
1: जी,
0: उन्हें हम मानते हैं। उन्होंने स्वर प्रधान गायकी, मधुर मींड, सूक्ष्म श्रुतियां और विलंबित आलाप के माध्यम से किराना घराने को एक नई ऊंचाई और व्यापक प्रतिष्ठा दी है। खान साहब के बारे में बहुत बोलने को तो जी चाहता है, लेकिन उनका गाना ही सुन के हम उसका जो अनुभव लेना चाहते हैं।
1: हाँ।
0: खान साहब का राग शंकरा सुनेंगे।

0: बहुत ही अप्रतिम ऐसा ये शंकरा
1: जी
0: हमने सुना, खां साहब का ये शंकरा सुनकर।
1: जी जी,
0: वैसे तो कुछ भी और सुनना नहीं है, सिर्फ यही मन में लेकर हमें जाना है ऐसा लगता है, लेकिन सुर का महत्व देने वाला लता जी का सुंदर स्वर जो है
1: जी,
0: वो तो उनको एकदम लगता है।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: कम समय में ज्यादा

0: दफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज़ में संत ज्ञानेश्वर फिल्म के गाने के साथ। भरत व्यास हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी का जन्मदिवस है, इसलिए आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। लीजिए अब सुनिए भरत व्यास का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम सती सावित्री।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और कमल बारोट की आवाजों में पारसमणि। फिल्म का गाना असद भोपाली है, गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना।

0: भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का गाना। प्रदीप हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में बॉक्सर फिल्म से। असद भोपाली हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहर

0: शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: हैं राही प्यार के सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है मन मंदिर और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम आए दिन बहार के।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। श्रोताओं, हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: लिखा और खयाम का संगीत बद किया गाना, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की और फिल्म का नाम है शगुन। तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये गाना।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम है गाइड।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर,

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

आठ बजने को हैं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए। बस अब से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
1: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
2: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। ICC ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्यूंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
4: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में

0: कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
2: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़ैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6वीं और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
6: आइए सुने त्रिवेणी।

0: जहाँ तीन तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। इन मौसमों में अलग अलग तरह के व्यंजन पकाए और खाए जाते हैं। खाने पीने और पकवानों की बातों से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। दरअसल इन पकवानों और व्यंजनों के साथ जुड़ी बहुत सी कहानियां और बहुत से लोकगीत भी हैं और दादी नानी के समय से चली आ रही रीति रिवाज भी। हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन के लिए खान पान के बारे में शिक्षित करना, उचित खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना और कुपोषण को दूर करना है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आयोजन भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा 1982 से किया जा रहा है। संतुलित आहार लेकर किस तरह से बेहतर सेहत पाई जा सकती है? सही पौष्टिक आहार से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटना, खान पान से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत करना, कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाती है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे खाने में कीटाणु नहीं जाते और बीमारियां दूर रहती हैं। खाना बनाते समय हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, बर्तन सिंक खाना पकाने की सतह को धोकर साफ रखें, छिलके और कचरा फेंकने के लिए कचरा पात्र रखें। खाना बनाते समय साफ और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना पेट की बीमारियों से बचाता है। भोजन को ढककर पकाना और उसे बार बार गर्म न करना पोषण को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। बार बार गर्म करने पर भोजन के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं।

मौसम के अनुसार अपने स्थानीय इलाके में मिलने वाले फल और सब्जियों का सेवन करना सबसे बेहतरीन उपाय है। मौसम के अनुसार मिलने वाले फल सब्जियां सीजन के दौरान ये चीजें भारी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण दाम भी कम होते हैं और लंबे समय तक ताजा रखने के लिए केमिकल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के साथ एक साथ बैठकर भोजन करने से सेहत बनती है और आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। शांति से साथ बैठकर खाने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है। परिवार के साथ खाने से रिश्तों में मजबूती, प्यार और अपनापन बढ़ता है। दिन भर की थकान मिटती है और मानसिक शांति मिलती है।

साथियों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के सही खानपान पर विशेष ध्यान देकर हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को सही तरीके से मना सकते हैं। आज की त्रिवेणी अब संपन्न होती है।

0: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना? बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करवा

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड शूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
3: चमड़ी पर फीका, लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी

0: नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम पानीपत जिलों में मकानों झोंपड़ियों फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराएं नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं के कुणाल और प्रवीण मणि की आवाजों में गुलजार के लिखे गीत के साथ, जिसे संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने। फिल्म का नाम साथिया।

विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, चंद संदेशों के पहले आपने जो गाना सुना वो हमदम सुनी और साथिया फिल्म से, और आप समझ ही गए होंगे कि आज सुप्रसिद्ध अभिनेता विवेक ओबेरॉय जी का जन्मदिवस है। हम उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आपको सुनवाते हैं विवेक ओबेरॉय जी की ही फिल्म का गाना। फिल्म का नाम है क्यों हो गया ना। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय, और आवाज़ें हैं साधना सरगम और उदित नारायण की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम उदित नारायण की आवाजों में क्यों हो गया ना। इस फिल्म का गाना जावेद अख्तर के थे बोल और शंकर एहसान लॉय की थी तर्ज। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो तुरंत हाजिर होते हैं।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तुमका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना। प्रसून जोशी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नताली दिल्लुसियो की आवाजों में इंग्लिश इंग्लिश फिल्म का गाना स्वानंद किरकिरे हैं। गीतकार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।
1: नौराई माझी लाडाची लाडाची ग।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
5: अरोड़ा प्लाईवुड,
6: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
5: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना। इसे गाया है रेखा भारद्वाज ने, नृत्य के बोल हैं पंडित बिरजू महाराज के स्वर में, गुलजार ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है विशाल भारद्वाज ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए ऋत्विक तलाशिलकर की आवाज में मलाल फिल्म का गाना। गीतकार हैं प्रशांत इंगोले और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
5: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है,
5: स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल

0: मैं सिलेक्ट हुई थी,
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
0: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से, मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में भूल भुलैया 2 फिल्म का गाना। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

हाय चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए अल्तमश फरीदी की आवाज में कौसर मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना, रकीब आलम थे गीतकार और संगीतकार थे देवी श्री प्रसाद। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मनोज तिवारी की आवाज में गैंग्स ऑफ वासेपुर, यह है फिल्म का नाम। वरुण ग्रोवर हैं गीतकार और संगीतकार हैं स्नेहा खनवलकर।

0: इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विलर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: Hey Chandigarh, this is Sahaj Sabharwal, an author, influencer, motivational speaker, youth icon from Jammu and Kashmir and an aeronautical engineer. So, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके सीवी में भी कोई ऐसी जगह है या कहानी है, ट्रेडिशन या टैलेंट जो इंडिया को पता होना चाहिए? Then this is a chance for you all, Gems of India Challenge में आप 1 से 3 मिनट की अपनी वीडियो बनाएं और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने बताइए। बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉगिन करना है और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक आपने अपलोड करनी है। डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट टू, सो यू क्रिएट देन पोस्ट देन यू हैव टू स्प्रेड इट इन द होल इंडिया। थैंक यू।
5: और हम आपको बता दें कि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। नौ बजकर 30 मिनट हो चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आज का अखबार।
6: आज का अखबार।
5: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर हम आपके साथ हैं और इस प्रोग्राम में आपको मालूम है 10 बजे तक आपके साथ रहते हैं, अखबारों से ली गई जानकारी आपसे शेयर करते हैं, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जेन जी के बारे में।

जी, और जेन जी के बारे में अगर ये कहें, अगर ये सुने या पढ़ें कि वो नेटवर्किंग से कतराते हैं, तो आप यकीन करेंगे? नहीं ना करेंगे। लेकिन भारत के जो जेन जी हैं वो नेटवर्किंग से कतराते हैं पेशेवर दुनिया में, यह कहना है एक रिपोर्ट का। हालांकि ये सभी इंटरनेट फ्रेंडली हैं, इनका ज्यादा वक्त जो है इंटरनेट पर बीतता है, इनका कामकाज हो, पढ़ाई की बात हो, दुनिया की कोई भी बात हो, इंटरनेट के बिना संभव नहीं, क्योंकि दस्तूर है अब जमाने का। लेकिन इंटरनेट फ्रेंडली होते हुए भी एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि भारत के 83% जो जेन जी हैं वो पेशेवर नेटवर्किंग से कतराते हैं, यानी उन लोगों को से नहीं जुड़ते, उन लोगों से वो नहीं जुड़ते जो उनकी करियर बनाने में मदद करते हैं। अब हम आपको बताते हैं विस्तार से ये खबर क्या है। युवा पेशेवरों का ये सोचना है कि उन्हें अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें गलत आंका जाएगा या दूसरों को हम खामखा परेशान करेंगे। लिंक्डइन की रिपोर्ट के मुताबिक 44% जेन जी पेशेवरों को गलत आंके जाने का डर है, 39% को दूसरों को परेशान करने की चिंता और 37% को बनावटी लगने का डर जो है, अनचाहा जो डर है, वो जरूरी सलाह लेने, लोगों से जुड़ने और नए मौकों का फायदा उठाने से रोक रहा है, ये रिपोर्ट दावा करती है। 52% पेशेवरों को नहीं पता कि बातचीत कैसे करें। रिपोर्ट में सामने आया है कि 79% युवा पेशेवर रिश्तों की अहमियत समझते हैं, लेकिन 52% को बात शुरू करने का तरीका ही नहीं पता, यह रिपोर्ट का कहना है। जान पहचान से नौकरी पाना हालांकि कई बार आसान भी हो जाता है, आंकड़ों के अनुसार जेन जी को नौकरी मिलने की संभावना उन लोगों के मुकाबले 8% से ज्यादा होती है जिनकी कंपनी के भीतर जान पहचान होती है। इसके बावजूद सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण युवा इस बड़े लाभ से वंचित हो जाते हैं। अब किस तरह से इस हिचकिचाहट को दूर किया जाए, कैसे भरोसा बनाया जाए, आत्मविश्वास बनाया जाए, इसके लिए रिपोर्ट ये कहती है कि नेटवर्किंग का मतलब केवल अनजान लोगों से संपर्क करना नहीं है। समय के साथ छोटी छोटी बातचीत से भरोसा बनता है, आपका दायरा बढ़ता है, इससे आपको मौके, नई जानकारी और जरूरत के समय मदद मिल सकती है। 44% जेन जी को दूसरों के आंके जाने का डर ये बहुत सताता है कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे। 39% लोग इस चिंता से पीछे हट जाते हैं कि वो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, हालांकि दूसरा परेशान हुआ या नहीं इसका डर उन्हें पहले ही सताने लगता है। और 37% लोगों को बनावटी लगने का डर सताता है। तो अब मदद कैसे ली जा सकती है? इसीलिए तो कहते हैं कि हर जनरेशन के साथ जुड़ना चाहिए। जो घर में, परिवार में, आपके अगल बगल जो पुराने लोग जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें तजुर्बा है बात करने का, लोगों से मिलने का, कैसे बात को शुरू किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, तो उन्हें अपनी इस नेटवर्किंग की दुनिया से जोड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, बतिया सकते हैं, तो कई सारे अनुभव आपको मिलते हैं और एक नया रास्ता निकलता है। तो घबराना नहीं है, पेशेवर जो नेटवर्किंग है इससे कतराना नहीं है, लोगों से जुड़ना है। केवल सोशल मीडिया पर एक दूसरे के जो हैं बातें शेयर नहीं करनी है, बल्कि पेशेवर तरीके से भी नेटवर्किंग से जुड़ने की आदत बनानी चाहिए, तभी आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो सपना आपने संजोया है।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और अगली खबर आपसे साझी करते हैं, विश्व बैंक की है। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा का कहना है कि भारत अब उस मकाम तक पहुंच चुका है जहां विकसित भारत 2047 के उसके अनुभव दुनिया के लिए नज़ीर बनेंगे। अमेरिका के एशविल में हुई G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक चर्चा में बंगा ने कहा कि भारत का सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। और एक खबर है हमारे डाकघरों के बारे में, डाकघर से अब पेमेंट, बीमा, म्यूचुअल फंड भी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाते हुए भुगतान, बीमा और म्यूचुअल फंड के लिए 3 नई सुविधाएं शुरू की हैं। इनका मकसद ग्रामीण और छोटे शहरों के ग्राहकों को सेवाओं से जोड़ना है। बैंक ने कारोबारियों के लिए डाक पे साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। दूसरी सुविधा डिजिटल इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए ग्राहक एक ही डिजिटल मंच पर बीमा विकल्पों तक पहुंच सकेंगे। डिजिटल म्यूचुअल फंड निवेश सेवाओं को भी ग्राहकों तक पहुंचाने की नई पहल की गई है। और आज का अखबार प्रोग्राम में अब आपको जानकारी देते हैं जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में। जेम्स ऑफ इंडिया, अपने जिले की कहानी, अपनी जबानी। देश के हर जिले की अपनी खास पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर

सर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है और इसके लिए पंजीकरण माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर लॉगिन करें, मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और इसे सबमिट कर दें। खास बात यह है कि चंडीगढ़ भी इस चैलेंज के पायलट चरण में शामिल है और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पहले जो आखिरी तारीख थी वो 31 अगस्त तक थी, लेकिन अब 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। तो अब देर मत कीजिए, अपने शहर, गांव या ज़िले की किसी ख़ास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कैद कीजिए और बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर ज़िले में छिपे उन अनमोल जेम्स में हैं जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए मिलकर करते हैं इस जिम्मेदारी का निर्वाह और 30 सितंबर तक जो अपनी प्रविष्टियां हैं वो भेजते हैं। अब देर नहीं करते हैं क्योंकि चंडीगढ़ भी पायलट चरण में शामिल है इस जेम्स ऑफ इंडिया में।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है?

0: इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
1: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वागत है दोस्तों आज का अखबार प्रोग्राम में। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब आरी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। सबसे पहले अयोध्या की बात करें कि राम मंदिर में पहला CEO नियुक्त। ऑपरेशन सिंदूर में कमाल कर चुके एयर मार्शल रिटायर्ड जितेंद्र मिश्रा संभालेंगे राम मंदिर ट्रस्ट। उधर वीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने FLY-91 में पायलट के रूप में संभाली नई जिम्मेदारी। नेपाल में जल प्रलय के 8 दिन बीत चुके हैं। 4,875 लोग अब भी लापता हैं। 1,243 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री निशा ने भारत द्वारा दी गई मदद को सराहा है और कहा है कि भारत से रोटी बेटी का नाता। और सहायता के इसी सिलसिले में भारत ने पांचवी सहायता के रूप में 5.5 टन आवश्यक दवाइयां नेपाल भेजी हैं।

भारत ने 10 साल में 100 नए एयरपोर्ट बनाने का बीड़ा उठाया है। 30,000 करोड़ खर्च होंगे, 10 साल में 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। सोना एक माह के निचले स्तर पर, घरेलू बाजार में 1.50 लाख रुपए के पास आया गोल्ड का रेट। 35 साल के बाद बढ़ाई गई भारत की क्रेडिट रेटिंग।

सीबीआई करेगी अभिनेता सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा की मौत की जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया इस संबंध में आदेश।

और अब खेलों की दुनिया में यूएस ओपन विंबलडन चैंपियनशिप में 5 सेट के रोमांच में जीते जोएरे इटली के सोंगो को 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में पहुंचे। दिलीप ट्रॉफी में उत्तर को हराकर फाइनल में दक्षिण, जीत में तिलक चमके, पूर्वी क्षेत्र से होगा फाइनल। और बैडमिंटन में चाइना मास्टर्स के पहले दौर में हारे शटलर लक्ष्य। फुटबॉल के क्षेत्र से जुड़ी खबर है, प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों पर धन वर्षा, बना रिकॉर्ड, अंतिम दिन 6,000 करोड़ से भी अधिक के हुए सौदे, कुल खर्चा रिकॉर्ड 44,000 करोड़ पार। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

0: वेलकम बैक दोस्तों। अब प्रोग्राम में आपको जानकारी देते हैं, प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों में एक योजना के बारे में हम बात करते हैं, सीखो और कमाओ योजना। इसके उद्देश्य के बारे में आपको बताते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो 12वीं योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दर को कम करना है, अल्पसंख्यकों के पारंपरिक जो कौशल हैं उनका संरक्षण करना है और उनका सुधार करना है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें बाजार के साथ जोड़ना है। मौजूदा कर्मियों की जो कुशलता है, जो उनका कौशल है, उसको बेहतर बनाना है तथा उसका स्थापन करना है, उसे सुनिश्चित करना है, उनकी प्लेसमेंट को, और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना है, और साथ साथ में उनकी पढ़ाई भी जो है जारी रखनी है। हाशिए पर रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए आजीविका के बेहतर साधन पैदा करना है और उन्हें मुख्य धारा में लाना है। बढ़ते हुए बाजार में अवसरों का लाभ उठाने में अल्पसंख्यकों को सक्षम बनाना है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सब के चलते देश के लिए सशक्त मानव संसाधन तैयार करना है। तो ये है सीखो और कमाओ योजना, प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए, विकास के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों में से एक योजना सीखो और कमाओ, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बारी है यहाँ एक अंतराल की, अंतराल के बाद रीजनल हेडलाइंस लेकर आपके साथ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: ओरिजिनल हेडलाइंस में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस हैं। पंजाब में मानसून सुस्त, अब तक हो चुकी है 233 mm बारिश, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है। पंजाब में एनालॉग पनीर पर 1 साल की रोक है, होटल रेस्तरां में परोसना भी प्रतिबंधित, 512 सैंपल की जांच में 42% गैर मानक, 156 सब स्टैंडर्ड और 59 असुरक्षित मिले। पंजाब की सड़कों पर दौड़ रहे खटारा, जर्जर और प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों पर अब कंप्यूटर और रोबोटिक मशीनों की होगी सीधी नजर, सेंसर तय करेंगे कि वाहन सड़क पर चलेगा या नहीं। कपूरथला में अब ATS खोलने की तैयारी।

0: कैश फॉर ट्रांसफर और जमीन धोखाधड़ी मामले में ईडी का एफआईआर के लिए दबाव, पंजाब ने मांगे स्पष्ट सबूत। और हरियाणा की खबर है, बैंक घोटाले के मामले में 6 आईएएस ऑफिसर समेत 19 के खिलाफ चार्जशीट। चरखी दादरी में सीसीआई की 200 एकड़ जमीन पर बनेगी औद्योगिक नगरी। 30 साल से बंद सीमेंट फैक्ट्री की जमीन पर अब कई उद्योगों को मिलेगा ठिकाना। 405 करोड़ रुपए से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगे 505 बेड। और हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है। 5 घर ढहे, 8 क्षतिग्रस्त और नाले में बहने से हुई एक की मौत। विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित किया हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कानून। शिमला से रामपुर बुशहर हेली टैक्सी सेवा शुरू। और लोकल हेडलाइंस में, ट्रिब्यून फ्लाईओवर पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा प्रशासन, लगा फुल स्टॉप। अंडरपास समेत दूसरे विकल्पों पर बनेगी नई योजना। एक खिड़की कई सेवाएं, अब नहीं लगाने पड़ेंगे विभागों के चक्कर। स्टेट बिल्डिंग ब्रांच और एनफोर्समेंट समेत सभी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी। ये तो थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की, स्थानीय समाचार पत्रों की। अब आज का अखबार कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है और जाने से पहले यही कहेंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिए। अनिल पुंज को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: आज का अखबार,
0: अभी आपने आज का अखबार कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि 10:05 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुरीला सफर और 11 प्रोग्राम होगा लक्ष्य। 10 को हैं कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हम समाचार रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट ड वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता और

0: वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन यह भी साफ किया कि जांच के दौरान किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इन नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा, किसी सच्ची प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रनों से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम में आज सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं एक फिल्मी गाने से। ये फिल्म है यलगार, गाने को गाया है कुमार सानू के साथ सपना मुखर्जी ने।

सपना मुखर्जी की आवाजों में ये गीत सुना यलगार फिल्म से। गीतकार थे सुदर्शन फाकिर, संगीतकार चन्नी सिंह।

0: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छोत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तुहका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एरोस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर में लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
2: सफर सुरीला सा प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की और इसमें आवाजें हैं जावेद अली, श्रेया घोषाल और पृथ्वी गंधर्व की।

0: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
1: प्रोग्राम में ये अब फिल्मी गाना है, बंदिनी फिल्म है, एसडी बर्मन की आवाज में ये गीत है आपके रेडियो सेट पर।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है गैर फिल्मी गजल की। फनकार हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह।
4: सुर, सोज और अदायगी,

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: और अब सुनिए मोहम्मद रफी को दिल ने फिर याद किया इस फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी को भी आपने सुना, ये फिल्म थी दिल ने फिर याद किया। इस गीत को संगीत दिया सोनिक ओमी ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से प्रोग्राम सफ़र सुरीला सा। कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की।

अभी आपने ये गीत सुना, जसलीन रॉयल बादशाह और अंश चहल की आवाजों में। बजरंगी भाईजान फिल्म से गीत आपको सुनवाते हैं। जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत है। कौसर मुनीर के बोल हैं, संगीतकार प्रीतम।

गीतकार हैं नीलेश मिश्रा, संगीतकार प्रीतम, जुबिन नौटियाल गायक। ये फिल्म है बजरंगी भाईजान।

अभी आपने आशा भोसले और अभिजीत की आवाजों में ये गीत सुना, और अब आपको सुनवाते हैं एक नॉन फिल्मी गाना आदित्य रेखड़ी की आवाज में।

तो ये तो था आदित्य रेखड़े की आवाज़ में गीत, नॉन फिल्मी गीत था। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अब से कुछ ही देर में 11 बजे लक्ष्य कार्यक्रम होगा। इस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कोच और खिलाड़ी विवेक ठाकुर से। इनसे बातचीत की है हमारे साथी रमेश कपूर ने। आज इस बातचीत का आप सुनेंगे दूसरा भाग। और अब प्रोग्राम के आखिर में फिल्मी गाना, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में ब्लैकमेल, ये फिल्म है। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुना। ये फिल्म थी ब्लैकमेल। इसी गीत के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम है लक्ष्य, ये आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तुहका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थाल 6 बाइक 12 स्कूटी 1,000+ विनर्स 2 लीटर एरोस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
2: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाय भेजें 1800-444 पर।
0: लक्ष्य
3: लक्ष्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों आज लक्ष्य कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता, लगातार 7 साल के नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल जूडो कोच श्री विवेक ठाकुर। विवेक जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य कार्यक्रम में।
4: रमेश कपूर जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मैं ऑल इंडिया रेडियो का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आपके बीच में अपने विचार साझा कर सकूं।
3: विवेक जी इससे पहले की बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, कुछ बातों के अंश जो पिछले प्रोग्राम में आपने हमारे साथ शेयर की थी वो हम अपने उन श्रोताओं को सुनवा दें जो किसी कारणवश पिछला लक्ष्य कार्यक्रम नहीं सुन पाए।
4: जी बिल्कुल,
3: उनके लिए एक रीकैप।
4: सबसे पहले जो शुरुआत होती है इंसान की वो घर से ही सीखता है, तो मेरे परिवार में मैं मेंशन करना चाहूंगा तकरीबन 4 से 5 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हम एक जॉइंट फैमिली है। और उसके बाद मेरे जो पिताजी है वो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। मेरे ताऊजी जो बड़े पापा थे वो वॉलीबॉल के बहुत एक नामी खिलाड़ी थे, उन्होंने ऑडिट AG पंजाब जो है वहाँ पे कार्यरत थे वो। उसके बाद मेरे बड़े भाई जो है चेतन ठाकुर वो फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और सुनील छेत्री के साथ उन्होंने एशियन में पार्टिसिपेट किया है, भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है। मेरी बड़ी सिस्टर मीनाक्षी ठाकुर है जो कि एक योगा की एशियाड है। मेरी वाइफ जूडो की खिलाड़ी है, वो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और नेशनल चैंपियन है। कई बार ऐसा था कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था लाइफ में बड़ा, और बहुत छोटी आयु में मैंने नेशनल चैंपियन का जो खिताब है वो अपने नाम किया था। 13 वर्ष की आयु में ऑल इंडिया पे नंबर 1 रहा और मेरा स्कूल गेम्स मुझे याद है दिल्ली में स्कूल गेम्स हुई थी उसमें मेरा जो है चंडीगढ़ को मैंने रिप्रेजेंट किया था, पहली बार मेरा गोल्ड मेडल आया था। और वहां पे जो उस समय SGFI के जो प्रेसिडेंट होते थे महाबली सतपाल जी, रेसलिंग के काफी बड़ा नाम है रेसलिंग का, तो उनका अखाड़ा चलता था वहां पे छत्रशाल स्टेडियम में। तो मैंने

0: उधर काफी खिलाड़ी इंडिया की जर्सी पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया के कॉस्ट्यूम पहन के, तो मुझे मतलब बहुत वहां से मोटिवेशन देखने को मिला। और एक आध साल के बाद ही मैं, उस समय मैं 14 वर्ष का था, मेरा सिलेक्शन जो है वो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज अ साइन मेड एसटीसी, उस समय एसपीडीए होता था, स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज के नाम से, जो की भारत सरकार का एक बच्चों के लिए एक हॉस्टल का स्कीम थी, फिर वहां हो गई थी। तो वहां एनआईएस में हमारी ट्रेनिंग होती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जिसको खेल का मक्का कहा जाता है। तो वहाँ पर बहुत ऐसे बड़े चेहरे हमने देखे जो हम अखबारों में या टीवी पे देखते थे, तो हम एक टेबल पे बैठ के खाना खाते थे। तो बस वहाँ से फिर बहुत छोटी आयु में मुझे एक्सपोजर मिल गया। सेंटर में हमारे जो कोच थे उतना तो ध्यान नहीं होता था, देखो हम खुद ही अपने आप ही आना जाना, स्ट्रगल ज्यादा था क्योंकि साइकिल नहीं होती थी, पैदल चल के आना जाना, पैदल चल के, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमने, हमारे पास कुछ विकल्प नहीं थे ऐसा। और हमारा जो बैच होता था उसको सिर्फ एक घंटा ही मिलता था ट्रेनिंग करने का, तो बस ये कि जितना समय मिलता था उसमें अपना मेहनत करते थे। और जो हमारा आने जाने का, जो मैं मानता हूँ जो मेरा सफर था, वो जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे या पैदल चल के आना पड़ता था, वो चीजें मेरे को ज्यादा, मुझे लगता है उन्होंने मुझे टफ बनाया है। बारिश हो तूफान हो, जाना ही है किसी भी कंडीशन में, उसको मिस नहीं करते थे। तो एक पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी और रूटीन एक जो है वो फॉलो किया, और जो जितनी हमारे पास सुविधाएं थी उसके दम पर ही हमने ये जो है चैंपियन का जो खिताब है वो मैंने अपने नाम किया।
1: विवेक जी, ये तो थी वो बातें जो आपने पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर की, उनके कुछ अंश हमने अपने श्रोताओं को सुनवाए। विवेक जी, क्योंकि आप इंटरनेशनल कोच हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय कोच के रूप में जब आप खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्तर पर तैयार करते हैं, तो किस चीज पर आप खास ध्यान देते हैं ताकि हमारे भारत से वो इंटरनेशनल खिलाड़ी, वो चैंपियन निकल पाए?
0: देखिए, मैं लगभग 2023 से मैं भारतीय टीम का जो है एज अ कोच रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, और मैं कई इवेंट्स में एज अ हेड कोच भी अपॉइंट हुआ हूँ जूनियर इंडियन टीम के साथ। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि 30 से ज्यादा पार्टिसिपेशंस मेरे बच्चों की इंटरनेशनल इवेंट्स में है, जिसके अंदर एशियंस, कॉमनवेल्थ गेम्स और चैंपियनशिप दोनों, जूनियर कैडेट एशियन चैंपियनशिप और एशियन जूनियर की और कैडेट की दोनों, वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर और कैडेट दोनों, सीनियर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स और ग्रैंड प्री ग्रैंड स्लैम, मतलब जितने भी इवेंट है एक ओलंपिक को छोड़ के और एशियन गेम्स को छोड़ के, अभी ये दो टारगेट मेरी रडार पर है। उससे पहले जितने भी हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल कप्स होते हैं, और सभी में लगभग मेरे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे को उम्मीद है इस बार हम मेडल की भी पूरी मेरी, क्योंकि मेरे अभी दो बच्चे जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं जूनियर कैटेगरी में। तो अभी आने वाली कुछ महीनों में जो है हमारी उज्बेकिस्तान में जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है। तो सर, अब बात करते हैं, हम आप कह रहे हो कि मेडल जो है या क्या गुण है बच्चों को, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो? सर, उनको बहुत, एक कोच का काम इंडिया में, अगर आप कोच हैं तो आप ही उस बच्चे के कोच हैं, आप ही उसके पेरेंट हैं, आप ही उसके साइकोलॉजिस्ट हैं, आप ही उसके फिजियो हैं, आप ही उसके फाइनेंसर हैं। सारी चीजें जो है वो कोच के ऊपर ही निर्भर करती है, और कोच जो है किस तरीके से खिलाड़ी को बनाना चाहता है, एक एक छोटी छोटी हर चीज। देखो, बच्चों के, मेरे पास ज्यादा जो है वो बच्चे मध्यम परिवार से या फिर थोड़े से पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी वाले बच्चे आते हैं। कई बच्चे हैं जिनके माता पिता छोटे मोटे दहेड़ी का काम भी करते हैं, कोई वेल्डिंग बिल्डिंग का काम करते हैं, या कोई कपड़ों की रेड़ी लगाते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से मेरे पास बच्चा आता है। तो सर, एक उसमें जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, उस बैकग्राउंड से जो बच्चा आता है ना सर, वो मेंटली ऑलरेडी स्ट्रांग है। उस बच्चे को मुझे मेंटली तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको हमने डायरेक्शन देनी है, क्योंकि वो रोज चैलेंजेस फेस कर रहा है सर। वो बच्चा, उसने गरीबी देखी है, उसने आर्थिक तंगी देखी है, उसने लिमिटेड रिसोर्सेज देखे हैं, उसमें भी वो बच्चा जो है वो अच्छा कर रहा है। उसके बाद बच्चे का जो सर ट्रेनिंग का प्लान बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लॉन्ग टर्म प्लान हमारा होता है कि अगले 4 सालों में ये बच्चा इंडिया खेलेगा, 3 सालों में ये बच्चे को इंडिया पहुंचना है। तो प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो प्लानिंग के लिए हमें हर 6 महीने 3 महीने में हम बच्चे को जो है वो इवेल्युएट करते रहते हैं, जिसके लिए हम वीकली बेसिस पे हम इन हाउस टूर्नामेंट करवाते हैं बच्चों के, कंपटीशन, शाही कंपटीशन बोलते हैं उसको, हमारे प्रैक्टिस का पार्ट है वो। हर हफ्ते सर हम उसको एक कंपटीशन का माहौल देते हैं बच्चे को, और वो उसकी एंट्री मैट पे सिर्फ दो ही बच्चे लड़ रहे होते हैं और 250-300 बच्चा बैठ के देख रहा होता है। एक ऑडियंस के सामने फाइट करने का एक उसका एक्सपीरियंस, और पूरी प्रॉपर वैसे फाइट लड़ना जैसे कि कंपटीशन के बीच में लड़ी जाती है। तो एक ऐसा एनवायरमेंट उसको हर वीक देते हैं जिससे कि बच्चे की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो कॉम्पिटिशन में जाकर उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं पहली बार मैट पे चढ़ाऊ। खेल विभाग की ओर से हमारे को बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से मैट्स मेरे पास जो

0: में यूज हो रहे हैं सर ओलंपिक स्टैंडर्ड के मैट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स, हमारे जॉइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स और हमारे अन्य जो अधिकारी है स्पोर्ट डिपार्टमेंट के, उनकी जो हेल्प से या सपोर्ट से या उनकी गाइडेंस से इस समय जो मेरे बच्चे हैं सर वो तकरीबन 50 लाख के मैट के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप कैसे बैकग्राउंड से आते हो कैसे नहीं वो मैटर नहीं करता, हर बच्चे को वही मैट पे ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है क्योंकि हमने एक ही जैसा सेटअप रखा हुआ है, कोई अलग अलग नहीं है। तो सर अच्छे इक्विपमेंट, अच्छी कोचिंग, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, साइंटिफिक बच्चों को टाइमली मॉनिटर करना, उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। सर अब मध्यम परिवार का बच्चा है मानिए, तो उस बच्चे के पास मुझे पता है कि रिसोर्सेज नहीं है खाने के, तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि बेटा आप कितना का आपके पेरेंट्स आपको खिला, मतलब खर्चा कर सकते हो एक्स्ट्रा जो घर के खाने से। तो कोई 50 रुपए कहता है कि दिन के 50 रुपए दे सकते हैं माता पिता, कोई कहता है 30 रुपए, 40, 50, 100। तो उस हिसाब से सर उस बच्चे की मैं डाइट प्लान करता हूँ जो कि उस बजट के अंदर बच्चा डाइट कर सके। और सर मेरे सेंटर में मेरे पास 200 के ऊपर जो है बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, सभी बच्चे जो है सर मेरे डाइट अपनी कैरी करते हैं साथ में अपनी खुद की, और ट्रेनिंग सेशन के बाद सभी बच्चे साथ में बैठ के अपनी डाइट को खाते हैं वहीं बैठ के, जिसके अंदर की हमने पूरी फुल न्यूट्रिशन डाइट जितना भी हमें कम से कम बजट में, जैसे अंडे हो गए, उबले हुए चने हो गए, अंकुरित दालें हो गई, हरी मूंग की दाल हो गई, मखाने हो गए, या आपका दूध जो बच्चे सेवन करते हैं उसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे, तो इस तरीके की चीजें जो है हम बच्चे की डाइट में ऐड करते हैं जो कि इजीली हमारी 20-30 रुपए के अंदर बन जाती है डाइट। तो जरूरी नहीं है कि महंगी चीज खा के आपको न्यूट्रिशन मिले, कम पैसे में भी आप कर सकते हो। तो सर ये ओवरऑल सारी चीजें जो है वो मिलके एक बच्चे को जो है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मुझे मेडल चाहिए तो उसकी तैयारी मुझे आज से शुरू करनी पड़ेगी, 4-3 साल पहले से। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी धीरे धीरे धीरे जब उस चीज के पास पहुंचते हैं तो हमारी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है ट्रेनिंग की, हमारे प्रोग्राम शेड्यूल भी चेंज हो जाते हैं, जहां 2 बार ट्रेनिंग होती है वहां 3-3 बार ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, वेट लॉस के प्रोग्राम उनके लिए अलग हो जाते हैं। अब तो सर बहुत फैसिलिटीज है, कई बच्चे मेरे जो है वो पीछे 2 साल अभिनव बिंद्रा जी की जो फाउंडेशन है उसके अंडर रहे हैं, तो वहां से हमें जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे पास फिजियोज, हमारे पास स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस, उनकी टाइमली असेसमेंट। कुछ बच्चे सर मेरे खेलो इंडिया स्कीम में हैं, खेलो इंडिया एथलीट्स हैं, जिसमें उनको हर 6 महीने में मॉनिटर करने के लिए, उनको असेसमेंट के लिए उनको भोपाल बुलाया जाता है। तो ऐसे सर प्रोग्राम चलते रहते हैं और बच्चों को हम टाइम टाइम पे मॉनिटर भी करते रहते हैं, और उनका ग्राफ जो है मैंने बढ़ते ही देखा है, नीचे आते नहीं देखा। तो सर ये ओवरऑल सारी चीजें सभी एस्पेक्ट्स पे मैं काम करना पड़ता है। सर सुबह जब मेरा बच्चा उठता है तो मुझे उसकी धड़कन का पता होना चाहिए कितनी बार धड़की है, जिसको हम बेसल हार्ट रेट बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो सुबह उठ के हम बेसल हार्ट रेट चेक करवाते हैं, जिससे मुझे उसकी बच्चे की लोड लेने की क्षमता का पता लगता है कि बच्चा कितना लोड ले सकता है, उसकी बॉडी प्रिपेयर है या नहीं है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें सारे एस्पेक्ट्स जरूरी है। उसके प्रैक्टिस पार्टनर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
1: जी बिल्कुल। और जूडो की अगर बात करें खासतौर पर, तो क्या जूडो को सिर्फ एक खेल के रूप में ही देखना चाहिए या फिर जीवन जीने का एक तरीका भी कह सकते हैं, अपनी आदत में शुमार करना चाहिए इसको? क्योंकि आज का जो माहौल है खासतौर पर अगर लड़कियों की बात करें तो उनके लिए जूडो सीखना कितना जरूरी है।
0: सर मेरे एकेडमी में एक स्टिकर लगा हुआ है, जूडो वे ऑफ लाइफ, मतलब जूडो एक्चुअल में एक लाइफस्टाइल है। हमें पता है कि हम स्ट्रांग है, हमें पता है कि हम ताकतवर है, मगर हम उसका इस्तेमाल नेगेटिव चीज में नहीं लगाते हैं कभी भी। सो जो हमारे प्रिंसिपल्स जो है जूडो के, वो प्रिंसिपल 3 सिद्धांत है। पहला है जूनोरी, जूनोरी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ जेंटलनेस। हम कभी भी देखना हारे या जीते हमारे खिलाड़ी हमेशा बो करके सिर झुका के मिलते हैं, क्योंकि जैपनीज स्पोर्ट है और जैपनीज कल्चर को हम फॉलो करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा सेरियोको ज़ेनो नोरी। सेरियोको ज़ेनो नोरी का मतलब है कि कम से कम ताकत लगा के मैक्सिमम एफिशिएंसी का प्रयोग करना। सो मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। फिर आता है हमारा जीता क्यों नोरी, म्यूचुअल वेलफेयर एंड बेनिफिट, मतलब सभी को साथ में लेके चलना है, सभी का सामाजिक और उसका खेल में दोनों तरफ विकास हो। तो ना केवल, अब तो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो गई है, जब से अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल आए हैं तो हमारे पीएम साहब ने भी इसको काफी प्रमोट किया है, और भी कई अन्य जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने इस चीज को काफी पब्लिसाइज किया है। हमारी लड़की अभी केबीसी में एक बच्ची आई है, अश्मिता डे। तो सर ओवरऑल जो है ये स्पोर्ट बहुत लाइफ में डिसिप्लिन रहना, अपने चैलेंजेस को फेस करना, बार बार गिर के उठना और उठ के फिर से तैयार होके कपड़े झाड़ के फिर लग जाओ अपने काम पे द्वारा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेसन है जो हम किसी स्कूल में या हमारे को घर में नहीं सिखाए जाते हैं। जब आप जूडो में खेलते हैं आपको पटक नहीं बजती, आप पीठ से नीचे गिर जाते हो तो आप नीचे बैठ के रोते नहीं हो, आप खड़े हो जाते हो और फिर प्रयास में लग जाते हो कि मैं उसको भी गिर सकूं, उसकी पीठ लगा सकूं। तो सर ये गेम इट इज अ लाइफस्टाइल, और हम तो इसके बड़े बड़े स्टिकर्स लगा के हम जूडो वे ऑफ लाइफ उसका करते हैं। और मैं एक हमारे

0: स्पेशली मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा, मेरे मेंटोर है हमारे जनरल सेक्रेटरी है एमेच्योर जूडो एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ के श्री एनएस ठाकुर जी। उनको अभी वो खिलाड़ी नहीं थे जूडो के, कभी भी उन्होंने खेल नहीं खेला, मगर उनको उनकी जूडो के प्रति जो उन्होंने जो किया है, कार्य किए हैं या जो उनकी अचीवमेंट्स है, उन्होंने जितने खिलाड़ी प्रोड्यूस किए, कितने कोचेज हम जैसे उन्होंने तैयार किए, तो मैं उनको फेडरेशन ने स्पेशली नीदान जो है सेकंड दान ब्लैक बेल्ट से नवाजा है अभी। तो इसका मतलब ये है कि जूडो खेलना ही नहीं, अगर आपके विचार जूडो की तरह है, अगर आपका थॉट आपके जूडो की तरह है, तो आप तब भी एक जूडो खिलाड़ी ही माने जाते हो। क्योंकि जो हमारे जूडो के फाउंडर थे डॉक्टर जिगोरो कानो प्रोफेसर थे वो, तो उनके जो सिद्धांत है जापान में उनकी बहुत सर्वमान्यता है और भी कई देशों में उनको बहुत लोग प्रेज करते हैं। तो उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो किताबें हैं, अगर उसको पढ़ोगे आप तो आपको समझ आएगा कि वो सिर्फ एक स्पोर्ट के तौर पे नहीं, उन्होंने जो नेगेटिविटी या जो सामाजिक जो चैलेंजेस थे उनसे कैसे ओवरकम करना है, वो जूडो के उससे तौर तरीकों से उन्होंने वो सिखाया है। काम रहना, शांत रहना, भले ही आप ताकतवर है, पावरफुल एग्रेशन का कम से कम इस्तेमाल करना, उसी की ताकत से उसी को ही कंट्रोल में ले लेना। तो ऐसी कुछ चीजें हमारे जो प्रिंसिपल जूडो के सीधे सीधे सिद्धांत है, और इसकी एजुकेशन का भी सर एक हमारा प्रोजेक्ट अलग से है।
1: जी विवेक जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाए?
0: सर लक्ष्य मूवी का गाना है, टाइटल सॉन्ग है, आएगा जो लक्ष्य है तेरा, तो मैं चाहूंगा वो गाना जो है वो ऋतिक रोशन फिल्म आया गया।
1: बिल्कुल जरूर, बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लक्ष्य, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता, 7 साल तक लगातार नेशनल चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच श्री विवेक ठाकुर। विवेक जी, आज बहुत से युवा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो जूडो को करियर के रूप में आप किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि जूडो की पढ़ाई के बारे में आप बताने वाले हैं, तो थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी सर, पहले तो सर जो हमारी छोटी क्लासेस में तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन आता है, उसमें मार्शल आर्ट में जूडो ऑलमोस्ट सभी किताबों में, सभी प्रैक्टिकल फाइल्स में, सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सर आप स्पेशलाइजेशन के लिए आप बीपीएड एमपीएड में अपना स्पेशल चूज कर सकते हैं उसको एज अ जूडो। उसके बाद सर एनआईएस पटियाला में कोर्स होता है जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, उसमें जूडो स्पेसिफिक आप चूज कर सकते हैं। और यदि आपकी कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटीज होती है, आप नेशनल खेले होने चाहिए हो, अगर नहीं खेले हो तो आप स्टेट लेवल के, तो आप पहले 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, उसके बाद आप नेशनल जो पूरे साल का एक कोर्स होता है हमारा डिप्लोमा, उसको कर सकते हो। तो 6 वीक में आपकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल कम है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्लेयर भी हैं या स्टेट लेवल के प्लेयर भी हैं, मिनिमम एजुकेशन +2 है उसमें, तो आप वो सर्टिफिकेशन लेके स्कूल कॉलेज में एज अ इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले कर सकते हो। तो आप इंस्ट्रक्टर जूडो के बन गए, अब आपने बनना है कोच। कोच बनने के लिए आपको एनआईएस में पूरे साल का जो हमारा एनआईएस कोचिंग का जो प्रोग्राम होता है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, उसमें आपको जो है एडमिशन लेना होता है। उसके हर तरह के सिलेक्शन प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकल होता है। मेरे इस बैच में मेरे सर 3 बच्चे जो है उन्होंने सिलेक्शन करवाया है और वो एनआईएस करने गए हैं इस साल। एक मेरी स्टूडेंट है, वो अभी इस बैच की टॉपर बन के निकली है एनआईएस पटियाला से। एक लास्ट ईयर ये लड़की गई थी, अब 3 बच्चे मेरे अभी और गए हैं इस बैच में। तो इसको करने के बाद एनआईएस के बाद हमारा नेशनल लेवल का जो आप एलिजिबल हो जाते हो एक नेशनल कोच के तौर पे, फिर हमारे फेडरेशंस के कुछ कोर्सेज होते हैं जिसको हम ऑफिशिएटिंग के तौर पे भी आप कर सकते हो और कोचिंग के तौर पे भी। एक है एनडीआईओ, एक है एनडीआईसी। एनडीआईओ है नेशनल डिप्लोमा इन ऑफिशिएटिंग, एक है नेशनल डिप्लोमा इन कोचिंग। इसके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, प्रैक्टिकल सेशन होते हैं, पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, और हर फेडरेशन जो है इस तरीके का एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है। टाइम टाइम पे सेमिनार होते हैं इसके, और अपनी जूडो को आप एनहेंस कर सकते हो।
0: अप्लाई भी ऑनलाइन ही करना होता है?
1: जी सर, इसके फेडरेशन एसोसिएशन के स्टेट एसोसिएशन के थ्रू आपको मेल आती है, तो जो भी प्रैक्टिशनर्स अभी कर रहे हैं तो वो एसोसिएशन आपको इन्फॉर्म कर देती है। और वैसे भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो कोई भी इंडिविजुअल उस वेबसाइट को जाकर उसमें लॉगिन करके देख सकता है। बल्कि उसमें लॉगिन आईडी भी नहीं डालनी पड़ती, आप सिर्फ उसको सर्च करेंगे वेबसाइट में तो उसमें सारे जितने भी उनका जो होम पेज है उस पे सारी आ जाती है पब्लिक, जो भी नई नई चीजें अपडेट नोटिस बोर्ड है, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सारी। सेम एनआईएस में कोई बताता नहीं है आपको सर, आपको एनआईएस का जो वेबसाइट पे जाना है और वहां से आप अपना ये चूज कर सकते हो। अब आ जाती है बात जॉब ऑप्शन की, तो अगर आपने एजुकेशन फील्ड में जाना है, आपने टीचिंग प्रोफेशन में प्रोफेसर बनना है या टीचर बनना है या फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, तो आपकी बीपीएड जो एमपीएड जो है ये एजुकेशन चलती है, इसमें जूडो स्पेसिफिक आप ले सकते हो। और अगर आपने कोचिंग में आना है, कोचिंग के लिए आपको एनआईएस डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, उसमें आपके पास ऑप्शन है कोच बनने का। कोच अब स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और नेशनल में आपका अगर करेंगे तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप एज अ कोच नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, और आप तो बहुत ज्यादा प्राइवेट जो कई ऐसी कंपनीज है बड़ी बड़ी, कई ऐसे आ रहे हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज में इन्वॉल्व होके बच्चों के लिए वेलफेयर के लिए जूडो करवाती है, और उसमें कोच को हायर किया जाता है बकायदा। तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं, और ये भी। इसके अलावा सर अगर आपकी मिनिमम आपने कोई मेडल वगैरह जीता है तो सारी फोर्सेज में आप, जैसे चंडीगढ़ पुलिस, हम चंडीगढ़ की बात करेंगे, चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा दिया जाता है 5% का। और इसके अलावा जो अदर पैरामिलिट्री

0: फोर्सेस है, सर्विसेज है, आर्मी है, रेलवेज है, कई जगह इनकम टैक्स है और एक्साइज टैक्सेशन है, बहुत जगह जूडो के बेसिस पर आप नौकरी भी लग सकते हैं। और इसके अलावा सर अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल
1: जी बिल्कुल, मैं वहीं पे आने वाला था क्योंकि आपने चंडीगढ़ शहर का नाम रोशन किया है और इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन एकेडमी के लेवल 1 कोर्स फॉर जूडो इंस्ट्रक्टर्स
0: जी सर जी।
1: आपने उसको डिस्टिंक्शन के साथ पूरा किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरह से ये हुआ।
0: एक्चुअली सर इसके ना फॉर्म्स निकले थे ऑनलाइन, वैसे ये काफी सालों से चल रहा है बट इंडिया में ये अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो इसमें हमारे फेडरेशन ने हमसे नाम मांगे कि कौन कौन इंटरेस्टेड है इसको करने के लिए। इस कोर्स का नाम है सर पहले तो IJF लेवल 1। IJF का मतलब है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन और उसके लेवल्स है उसके, तो लेवल 1 का जो कोर्स है 19 वीक्स का सर ये आपका ऑनलाइन क्लासेस लगती है आपकी, ऑनलाइन क्लासेस लगती है आपकी 19 वीक्स की, और उसके बाद आपके एग्जाम्स होते हैं वीकली बेसिस पे। उसमें आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ना सिर्फ जूडो स्पेसिफिक और इसके अलावा भी आपके स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड आपकी एजुकेशन और जो साइंस है या और फिजिकल आपकी बॉडी की जो अलग स्टडीज है वो सारी चीजों का, इवन फर्स्ट एड ऑल्सो, तो वो 19 वीक्स के अंदर आपको पढ़ाते भी है, लेक्चर्स भी होते हैं ऑनलाइन आपके। और ये ऑपरेट होता है सर माल्टा से, माल्टा में हमारा इसका जो IJF का जो है इंटरनेशनल वो है आपका हेडक्वार्टर है, वहां से IJF एकेडमी की बात कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन जो प्रोग्राम है। अब उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आप ब्लैक बेल्ट के सेकंड दान कम से कम होने चाहिए, ब्लैक बेल्ट होल्डर होने चाहिए हो आप अपनी नेशनल बॉडी से, तो उसके बेसिस पे आपकी फेडरेशन आपका नाम रिकमेंड करती है। फीसेस होती है आपकी यूरोज में भरने पड़ते हैं और मैं मेंशन कर देता हूं क्योंकि वो ओपन है, तो तकरीबन 85,000 के करीब आपकी कोर्स की फीस होती है जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं 19 वीक का। और उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको प्रैक्टिकल सेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है और वो सब एक वेबसाइट होती है IJF अकेडमी के नाम से, उस अकेडमी के पेज पे IJF अकेडमी के पेज पे जाके आप अपनी अप्लाई कर सकते हो फेडरेशन के आपके रिकमेंडेशन पे, और उसके बाद आप वहीं से आपका एग्रीमेंट वगैरह भी होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है। फीस जो है उसके लिए वो फॉरेन रेमिटेंस के लिए अपने स्विफ्ट कोड अकाउंट नंबर वगैरह भी देते हैं और आप इस फीस को ऑनलाइन ही पे कर सकते हो। तो ये कोर्स जो है सर प्रैक्टिकल थ्योरी होने के बाद आपको उसके बैचेस निकलते हैं कि प्रैक्टिकल सेशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो हर कुछ कुछ महीने में, कुछ कुछ वीक्स में वो अलग अलग वर्ल्ड के किसी किसी कोने में होते हैं, तो जो मेरा वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नाम उसी में आएगा, तो वो एक रैंडम लिस्ट है। तो बाय लकीली मतलब मेरा नाम जो है वो अजरबैजान बाकू के लिए आ गया था, तो मैं वहां पर इसके प्रैक्टिकल सेशन के लिए मेरे साथ 9 लोग इंक्लूडिंग मी, सो उसमें एक फीमेल थे मैम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया से, बाकी जो है 8 वो मेल थे सभी। नॉर्थ की सर अगर मैं बात करूं तो एक जम्मू कश्मीर के एक मेरे साथ कोच थे, उसके अलावा ना पंजाब ना हरियाणा ना दिल्ली कहीं से कोई नहीं था, इस रीजन में सिर्फ मैं हूं और एक मेरे साथ जम्मू के एक कोच है वो है, बाकी सब जो है वो साउथ से है, उत्तर प्रदेश से कुछ कोचेज है और आपका महाराष्ट्र से कोचेज है। इसके लिए पहले बैच में हमने 9 लोगों ने ये कोर्स किया है, कंप्लीट किया है, और इससे पहले सिर्फ 2 लोग हैं जो हमारे काफी सीनियर और एक अर्जुन अवार्डी भी है उसमें, यशपाल सोलंकी जी, वो उसने उन्होंने सबसे पहले लेवल 1 किया था, उसके बाद वीरेंद्र यादव जी है ITBP में कमांडेंट के तौर पे नियुक्त है वो, और इंडियन सीनियर इंडियन टीम के वो कोचेज वही ज्यादातर वही लोग ही जाते हैं क्योंकि सर्टिफिकेशन भी उन्हीं के पास थी और वैसे भी काफी सीनियर अच्छे कोचेज है वो। तो उसके बाद सर अब हमने ये कोर्स जो है वो किया और वहां पे सर एक हफ्ते का हमारा बहुत टाइट शेड्यूल होता है, मतलब पूरी जूडो जो हम एक साल में यहाँ डिप्लोमा में सीखते हैं नहीं इसमें सीखते हैं, एक साल वो सारा एक हफ्ते के अंदर आपने सीखना भी है, वहां पे आपने डेमोस्ट्रेट भी करना है और वहां पे आपने प्रैक्टिस भी करनी है उसकी और उसके एग्जाम्स भी देने हैं।
1: जी विवेक जी, क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत कम बचा है तो चलते चलते आप हमारे सभी सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे, एक अच्छा जूडो खिलाड़ी बनने के लिए, एक अच्छा जूडो कोच बनने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको?
0: सर अगर आप इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके चलोगे तो हमें अपना देश रिप्रेजेंट करने का, अपने देश का नाम रोशन करने का हमारे को एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, खिलाड़ियों के पास या कोचेस के पास। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप इस चीज में एक्सेल कर सकते हो तो आप प्लीज तभी इस फील्ड में आए, क्योंकि आप अपने से अगर आप कोच बन रहे हो तो आप अपने अगर आप उसमें सक्षम नहीं हो तो आप बाकियों की भी लाइफ उसमें खराब कर रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी नॉलेज लेके आए, इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ ना आए, बच्चों को साइंटिफिक मेथड से ट्रेनिंग कराएं, उनको सही गाइडेंस दे, और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को जो है एक्सेल करने के लिए उनको पूरी नॉलेज दे आप। बच्चों को यही है कि डिसिप्लिन में रहे, कोचेस का जो अपने कोच कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता है, आजकल जरूर थोड़ी सी पॉलिटिक्स होती है

0: कि प्लेयर को खींच लो, इधर से उधर ले जाओ। तो मैं यही गाइड करता हूं कि अगर आपके बेसिक कोच आपको सब कुछ परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं वहां पे, आपको सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है, आई डोंट थिंक कि आपको कहीं जाने की या कुछ ऐसी जरूरत है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज की या उसकी कमी है, तो आप जरूर डेफिनेटली आप अपना ट्राई करें कहीं पे। अदरवाइज जो बेसिक आपके कोचेज हैं, जो आपके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन पे विश्वास रखें, उन पे भरोसा करें और पेशेंस रखें। आपका काम है सिर्फ पेशेंट होकर ट्रेनिंग कीजिए अपनी और अपने कोच पे भरोसा रखिए। कोचेज के लिए भी यही है मेरा कि आप अपनी काम को अपनी वर्शिप की तरह सोचिए। अगर आपको तनख्वाह मिलती है तो आप उससे डबल ट्रिपल काम करके दिखाइए, सिर्फ उधर तक सीमित मत रहिए कि गवर्नमेंट मुझे इतना ही पैसा या मुझे इंस्टीट्यूशन संस्था इतना पैसा देती है तो मैं इतना ही काम करूंगा। क्योंकि एक नौकरी के साथ साथ एक जिम्मेवारी भी है। एक इंडिया को आप हमारे को एक नेशनल फ्लैग होस्ट करने का एक मौका मिलता है, तो इस चीज को सिर्फ एक आप ड्यूटी के तौर पे मत करें और इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के देश को है जो कंट्री के लिए कुछ अच्छा करें।
1: जी विवेक जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आपने लक्ष्य कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जूडो को लेकर हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू रमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज लक्ष्य कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता, लगातार 7 साल के नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल जूडो कोच श्री विवेक ठाकुर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी आकाश भारद्वाज ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रमन भगत। अब आज का लक्ष्य कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: लक्ष्य
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लक्ष्य FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइश आपकी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं चरस फिल्म के गीत से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है गिद्दड़बाहा पंजाब से मंजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल और बेबी हिनाशा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदा चिंदा, जसवीर रेखा, गगन सोनी, सीता और गीता। सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु, देवांशु, दीपांशु और चित्रांशु गुलाटी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं चरस फिल्म का ये गीत।

0: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
1: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
2: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइश आपकी। कार्यक्रम का अगला गीत हिना फिल्म से है, आवाजें हैं लता मंगेशकर की

गीत को लिखा है नक्श लायलपुरी ने, संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जैतेक विर्क और मीका विर्क, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ढींगरा, अपरा पंजाब से रूपलाल नाहर, शेखर नाहर, सुभाष, सोमनाथ, देवराज, अंबा और काला सोडी। आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं हिना फिल्म का गीत, आवाज है लता मंगेशकर की।

करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत, चाहलकलां पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर और अंबा चाहल, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीतारानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, मखू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज, ब्लॉक पत्ती गांव मौड़ खुर्द जिला बठिंडा से जगजीत मट्टू, रणजीत कौर मट्टू, जिम्मी फौजी, सोनू पिंकी, तपूरा मल और विजय विक्की, यहीं से बिल्ला और हरदेव, आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गीत क्योंकि फिल्म से है, इसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत को लिखा है समीर ने, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया। इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव कैरों जिला तरनतारन से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरु शब्द, चकला बाजार समाना से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल और हसमुख जिंदल, मुल्लापुर दाखा मंडी से बिट्टू जैन, मट्टू जैन, दीपक जैन, राजेश जैन, अरुणा जैन, नगीना जैन, जेबी राव और शिवा कपूर, महादेव घाट मलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर, भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक वर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।

मोरी गेट दिल्ली शहर से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब इराही और मेहराज जहां, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, रेवाड़ी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, दतरिंगी से भागवत वर्मा, लवाई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लोफर फिल्म में लता मंगेशकर को। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लोफर फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फरमाइश आपके कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइश आपकी FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया है। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर

0: हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के प्यारे लाल जी के साथ। आज उनका जन्मदिन है तो विविध भारती परिवार और आप सभी सुनने वालों की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और इस खुशी के मौके पर हम सुनेंगे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

साथियों, आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है आसपास।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगला गीत गा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है अभिनेत्री।
1: हंसो मत, बोलो

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, लता मंगेशकर को सुनिए इस गीत में जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है आशा, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आग और शोला।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: अमूल्य यादें।
1: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
0: अमूल यादें।
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें हैं अगले गीत में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है अग्निपथ।
3: मेरे हीरो,
4: ये क्या करती?
3: मेरे जानो,
4: तुझे डर लगती है?
3: मेरे बाला,
4: तेरा भाई हमको मारती?
3: तुझे सलाम। मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
4: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
3: तूने क्यों मुझे बचाया?
4: बस अपना फर्ज निभाया।
3: क्या तू कुछ भी कर जाता?
4: कर जाती।
3: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
4: अच्छा अच्छा, कर जाता।
3: मेरे लिए मर जाता?
4: हाँ मर जाता।
3: ओ माई गॉड, यू आर इन लव।
4: यू आर इन लव।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, फिल्म का नाम है अकेला।

मन भी चबाया फिर इत्र भी लगाया, थोड़ा संभल संभल के आया मैं सीधा चल के, पर लड़खड़ा गया मैं, मेरी चोरी पकड़ी गई।

मुश्किल है अब गुजारा, अब तक हूँ मैं गवारा, मुश्किल है अब गुजारा। शादी तो है झमेला, दिन रात की सलामी, बीवी की है गुलामी, बीवी की है गुलामी, बीवी की है गुलामी। फिर उसके बाद बच्चे रोते हैं अच्छे अच्छे, मुझको तो तोता बन के पिंजरे में नहीं यो रहना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना मुझे।

0: दिन शादी, बाकी है रात आधी। नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रैना, नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रैना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मुर्गे से बोली मुर्गी, तोते से बोली मैना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना।
1: आइए अब सुनिए अलका याग्निक को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है खलनायक।

0: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।
1: अच्छा।

0: संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 1:05 पर प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर कार्यक्रम रहेगा सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित होगा दोपहर 2:00। 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। शाम 5:20 समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का। शाम 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर आप सुन सकते हैं समाचार दर्शन। शाम 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर। फिर सुर सांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिए नाटिका शराफत। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 पर। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेता उत्तम कुमार पर केंद्रित रहेगा और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत।

एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अभी थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और 1:10 पर पंजाबी में हमारे जालंधर केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों को पानी की भविष्य की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने और उनके लिए चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया है। जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने आधुनिक जल संरक्षण तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने हर मॉनसून से पहले बांध सुरक्षा की व्यापक तैयारी करने, आवश्यक सावधानियां बरतने, स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाने और जल क्षेत्र से जुड़े सभी आंकड़ों को एक जगह एकीकृत कर उनके व्यवस्थित प्रबंधन, विश्लेषण और प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने कृषि लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई बड़े नीतिगत कदम उठाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में नीतियों में आत्मनिर्भरता मिशन पर आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जलवायु के हिसाब से विशेष फसली कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कम पानी और खाद की खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने तथा धान और दलहन की निर्यात योग्य किस्मों की पहचान करने पर जोर दिया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए उन्होंने गौशालाओं के माध्यम से किसानों को निशुल्क जीवामृत उपलब्ध कराने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना तैयार करने का सुझाव दिया। साथ ही कपास और दलहन की कटाई मड़ाई में आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सलाह दी। चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम विभाग के तत्वावधान में शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन शिविरों में श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकारों, लागू श्रम कानूनों तथा संगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। शिविरों के दौरान चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारियों ने श्रमिकों से सीधा संवाद किया और श्रम कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को सरल एवं सुगम भाषा में समझाया ताकि वे कार्यस्थल पर अपने अधिकारों और हकदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। पलवल चीनी मिल परिसर में प्रबंध निदेशक द्विजा की अध्यक्षता में एक विशेष किसान संगोष्ठी करवाई गई, जिसमें आगामी पेराई सत्र की तैयारियों, गन्ना उत्पादन बढ़ाने और मात्रा में सुधार लाने पर चर्चा हुई। प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत खेती के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता निरंतर दी जाएगी। गोष्ठी में अधिकारियों ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, संतुलित खाद और वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग की जानकारी दी। प्रदेश के सभी 600 स्वास्थ्य संस्थानों में टेली ईसीजी सेवा देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के तहत 2157 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। कैथल में आज एक भीषण सड़क हादसे में दो स्कूली छात्राओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसा सीवन बस अड्डे के पास उस समय हुआ जब स्कूटी से स्कूल जा रही दोनों बहनें एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गईं। मृतक छात्राओं की पहचान माड़ी गांव निवासी गुरनदीप कौर और 15 वर्षीय शरणदीप कौर के रूप में हुई है। दोनों सीवन के सरकारी स्कूल

नौवीं और दसवीं कक्षा की छात्राएं थी। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी बनाने के उद्देश्य से महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम का सख्ती से पालन करने, लिंग संवेदनशीलता और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानक संस्थावां नूं शहरीकरण करके दरपेश चुनौतियां, वधदी आबादी ते भविख विच पानी दीआं जरूरतां प्रति संवेदनशील बनाउण दा सद्दा दित्ता। उन्होंने शहरी स्थानक संस्थावां लई इसे तरह के विचार वटांदरी सैशन करन दा भी सुझाव दित्ता। कल प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय वल्लों आयोजित दो दिन राष्ट्रीय विभागी जल सम्मेलन के समाप्ति सैशन की प्रधानगी करदिआं जल संभाल तकनालोजियां नूं वधेरे अपनाउण दी जरूरत ते जोर दित्ता। श्री मोदी ने लोकां च व्यापक जागरूकता पैदा करन लई जल उत्सव दे आयोजन दा भी सुझाव दित्ता। प्रधानमंत्री ने हर मानसून सीजन तों पहलां व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियां दी पालना ते डैम सुरक्षा बारे स्कूल दे विद्यार्थियों विच जागरूकता वधाउण दी लोड़ ते भी जोर दित्ता। उन्हां कहा कि इस उद्देश लई विद्यक पाठक्रम च ढुकवां विशेआं नूं शामिल करन दा सुझाव दित्ता। पंजाब मनुखतावादी अते तकनीकी पहलकदमी तहत सूबे भर के सरकारी मुर्दाघर विच लियांदियां जाण वालियां अणपछातियां ते लावारिस मृतक देहां दी डिजिटल शनाखत लई सूबा पद्धरी जनतक पोर्टल पहचान शुरू करने वाला देश दा पहला सूबा बन गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने सूबा पद्धरी पोर्टल की कल रस्मी शुरुआत की। उन्होंने दस्या कि पहचान पहलकदमी तहत पंजाब दे किसी भी सरकारी मुर्दाघर विच पोस्टमार्टम दे 48 घंटिया दे अंदर अंदर हरेक अनपछाते लावारिस मृतक व्यक्ति दे चेहरे दीआं तस्वीरां, स्थाई शनाख्ती निशान जिवें कि जन्म तो कोई निशान होवे जां कोई टैटू, किसी खास शरीरक नुक्स दीआं तस्वीरां अते शरीरक हुलिया पोर्टल ते अपलोड कीता जावेगा। ए पोर्टल सेहत विभाग दीआं सारीआं अधिकारक वैबसाइटां राहीं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है अते भारत जां विदेश विच किसी भी थां तों परिवारां वल्लों इस पोर्टल राहीं शनाखत की जा सकती है। इस पोर्टल राहीं जिवें कोई दावेदार ऑनलाइन दावा दर्ज करेगा, संबंधित जांच अधिकारी नूं अपने आप सूचित कर दिता जाएगा ता जो परिवार नूं मुद्दा करा जां पुलिस थानियां दे चक्कर लाए बिना समर्थ कानूनी अधिकार तहत रस्मी शनाख्त वास्ते अग्गे दी कारवाई की जा सके। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
0: पंजाब सरकार ने आने वाले सौनी मंडीकरण सीजन 2026-27 दौरान झोनी की सुचारू निर्विघन ते समय सिर खरीद नूं यकीनी बनाने लई पुख्ता इंतजाम कीते ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारे संबंधित विभागों ते खरीद एजेंसियां नूं पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिते। इन्हां तैयारियों का जायजा लैण वास्ते एक उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले खरीद सीजन दौरान 5 लाख तों वध बारदाने की जरूरत होगी ते इस दी उपलब्धता लई प्रबंध पहला ही कर लिए गए ने। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार वालों नकद कर्जा हद लई पहला ही RBI नूं तजवीज भेज दिती गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग नाल पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे एक बागवानी ज्ञान केंद्र नूं मंजूरी दिती है। यह पहलकदमी 1300 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट का हिस्सा है जिसका उद्देश बागवानी का विस्तार करना, कीमत लड़ी में मजबूत करना ते किसानों की आमदन वधाना है। जिक्र योग है कि पंजाब ने 2036 तक बागवानी हेठले रकबे 16 लाख हैक्टेयर तक वधाउण दा टीचा मिथ्या है। गन्ना काश्तकारां नूं दरपेश वख-वख समस्यावां ते अपणियां हक्की मंगां नूं लैके किसानां ने कल गुरदासपुर प्रशासन नूं इक मंग पत्र सौंपिया। मुख खेतीबाड़ी अफसर सहबाज सिंह चीमा ने कहा कि किसानां वल्लों खेतीबाड़ी मंत्री दे नां दित्ता गया एक मंग पत्र तुरंत उच्च अधिकारियों ते सरकार तक पहुंचाया जाएगा। मुख खेतीबाड़ी अफसर ने यह भरोसा दिता कि आने वाले सीजन दौरान किसानां नूं खादां की कोई दिक्कत नहीं आन दित्ती जाएगी ते खादां की सप्लाई निरंतर बनाई रखी जाएगी। गुरदासपुर की वरांगला पुलिस के खुफिया विभाग ने बीती देर रात एक सांझे ऑपरेशन दौरान एक व्यक्ति को करीब 1 किलो तो वध हैरोइन समेत गिरफ्तार किया। टीम ने काबू किए व्यक्ति खिलाफ मामला

एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। दोस्तों, देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि पंजीकरण कैसे करना है। माई वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और लॉगिन करें। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और सबमिट करें। और ध्यान दीजिए, एंट्रीज अब 30 सितंबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी, तो देर मत कीजिए। अपने शहर, गांव या जिले की किसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कैद कीजिए और बनें जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म आंधी से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।

0: Biles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Biles से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए प्रस्तुत है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

आइए अब सुनते हैं फिल्म आशिकी का ये गीत। शब्द रचना है रानी मलिक, संगीतकार है नदीम शवन और आवाजें दी हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थाल 6 बाइक 12 स्कूटी 1,000+ winners 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर में लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
2: अरोड़ा प्लाईवर्ल्ड
1: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स सीलिंग्स एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स सब एक ही छत के नीचे
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवर्ल्ड एट SU 845 NSE मनी माजरा चंडीगढ़ कॉल 9876277700
0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

सारे जवाब आपके मिल गए हमें। जितेंद्र, सुनील दत्त, रीना रॉय, योगिता बाली, रेखा मुमताज, फिरोज खान, विनोद मेहरा, संजय खान, कबीर बेदी और निर्देशक थे इस फिल्म के राजकुमार कोहली। कुछ सवाल हमने और पूछे थे कि तो मिला ये जवाब कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के

पौड़ी नैनीताल उत्तराखंड में है और भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए अपनी आवाज डब करने वाले अभिनेता का नाम है आमिर खान।

अब आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे जिनके नाम बादल, सारंगी और पवन थे। एक दोस्त ने हमें लिखकर भेजा है कि सर्कस बचपन में तो बहुत देखे हैं पर वहां जानवरों पर बहुत अत्याचार होते हैं इसलिए अब नहीं देखते। स्कूल का होमवर्क भले ही याद ना हो लेकिन आप शोले के बारे में कुछ भी पूछें तो सिर्फ डायलॉग ही नहीं हम तो पूरी स्टोरी बता सकते हैं। अच्छा, और मेरे पास भी गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का एक डॉग है जो मेरे पास ही सोता है और जब मैं ऑफिस से वापस हम आते हैं तो वो मेरे पास ही रहता है। एक दोस्त का ये मैसेज है कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। एक बार मेरे कार्य क्षेत्र में एक हाथी का बच्चा कीचड़ में फंस गया था। उसकी माँ उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी और चिल्ला भी रही थी लेकिन वो जब असफल रही उसके बाद उसने हमारे स्टाफ के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमारे फॉरेस्ट के स्टाफ ने हाथी के बच्चे को निकाला। उसके बाद उसकी माँ उस बच्चे को साथ में लेकर चली गई। क्या बात है।

साथियों, फिल्म जानी दुश्मन में एक इच्छाधारी नाक के बदले की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें अरमान कोहली हीरो थे और दूध का कर्ज एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो एक अनोखे सांप नागेश्वर और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। नायक सूरज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम लिख दीजिए। साथ ही फिल्म नागिन में नजर आए थे राजीव कपूर, नाचे नागिन गली गली में मीनाक्षी शेषाद्री और शेष नाग में जितेंद्र और रेखा ने अहम भूमिका अदा की थी।

और अब बात होगी इस गाने की, जिसका नागिन डांस सभी शादियों में किया जाता है। एक इच्छाधारी नागिन खलनायक से अपना बदला लेना चाहती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खलनायक घर आकर अपनी बीन बजाते हुए तांत्रिक शक्तियों से ये सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करता है कि रजनी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अंत में नाटकीय संघर्ष होता है जिसमें बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। तो जल्दी से बताइए कि इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम क्या था, और ये भी बताइए कि क्या आपने नागिन डांस किया है, जरूर बताइए। और इस फिल्म का पार्ट टू भी तो आया था, क्या नाम था उसका? और गीतकार हैं इस गीत के आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं।

फिल्म का नाम था नगीना और इस फिल्म में थे श्रीदेवी और ऋषि कपूर और खलनायक थे अमरीश पुरी जिनका नाम था भैरवनाथ और दूसरे फिल्म का नाम था निगाहें जिसमें नायक थे सनी देओल खलनायक थे अनुपम खेर। हमारे एक दोस्त ने लिखा है कि मेरा छोटा बेटा अभी तक हजारों सांपों जीव जंतुओं पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर चुका है और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं कि नाग नागिन नागमणि नाग पंचमी निगाहें नगीना नागिन पुरानी नागिन नई आई मिलन की रात नाचे नागिन गली गली दूध का कर्ज नाग देवी ये तो पूरी लिस्ट दे दी आपने हमें। पहले के समय में अनेक तरह के जानवर लेकर मदारी आता था गली मोहल्ले में वो तब तकरीबन बंद हो चुका है। वन्य जीवन कानून के अनुसार अब बंदर या किसी और जानवर का तमाशा करना अवैध है अपराध है। नाग नागिन वाली फिल्मों के गीत सुनने में हमें आनंद तो बहुत आ रहा है मगर डर भी लग रहा है कहीं से कोई सांप ही ना निकल आए। अच्छा

विविध भारती के चाहने वालों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर एकदम लाइव। फिल्म हम आपके हैं कौन में क्लाइमैक्स में सबसे बड़ा हीरो था टॉफी नाम का डॉग, जो भगवान के सामने से चिट्ठी उठाकर सही इंसान तक पहुंचा देता है। तो टॉफी वो चिट्ठी किस अभिनेता को देता है उसका नाम बताएं, फिल्म के निर्देशक का नाम भी लिख दें। तब तक सुनते हैं ये गीत। लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। और ये भी तो बताइए कि हम आपके हैं कौन।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि सलमान खान, माधुरी दीक्षित निर्देशक थे इस फिल्म के, सूरज बरजातिया टॉफी जिनको चिट्ठी देता है वो अभिनेता थे मोहनीश बहल।

एक साथी ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन इस पारिवारिक ब्लॉकबस्टर फिल्म में टॉफी नाम का प्यारा सा डॉग एक अहम किरदार में था, जो क्लाइमेक्स में एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाकर फिल्म की कहानी को सुखद मोड़ देता है। साइंस कहता है कि सांप के कान नहीं होते, उसे सुनाई नहीं देता, फिर बीन का क्या रोल है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये भी मैसेज मिला है कि आप हमारे हैं बहुत ही प्यारे उद्घोषक जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी रोजाना घर पर जो खाना बनाती है उसमें से पहली रोटी हम गाय के लिए रखते हैं और आखिरी रोटी डॉग को देते हैं, ऐसा हम हमेशा करते हैं। दोस्तों, भीरू नाम की स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए बच्चों की गैंग बहुत संघर्ष करती है, भावुक कर देने वाली कहानी थी फिल्म चिल्लर पार्टी में। कुली अमिताभ बच्चन के इस फिल्म में अल्लाह रखा नाम का बाज मुख्य किरदार के साथ साई की तरह चलता है और दुश्मनों पर हमला कर हीरो की जान बचाता है। तो हीरो की माताजी की भूमिका निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री कौन थी और किसने उन्हें किडनैप कर लिया था, उस खलनायक का नाम बताएं। और इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मर्द का गीत। इसमें एक घोड़ा और एक श्वान दोनों ही सहनायक की तरह थे जो अंग्रेजों से लड़ते थे। इस गीत में दोनों के नाम छुपे हैं, सुनकर बताएं क्या नाम है दोनों के। और गीत में आवाज है मोहम्मद अजीज की, गीतकार हैं प्रयागराज, संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है मर्द।

वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं।

मरते दम तक चले ये तम तम। अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी की मैं चेता हूँ, मर्द टंगे वाला मैं हूँ मर्द टंगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टंगे वाला मैं हूँ मर्द टंगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

माँ क्यों परेशान है, अपनी किस्मत से हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत से है।

0: भाई बादल क्यों भाई मोदी थी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त।
1: साथियों आपके जवाब हमें मिले हैं कि कुली में अमिताभ बच्चन की माता जी की भूमिका में नजर आई थी वहीदा रहमान, मुख्य खलनायक थे कादर खान। और इस गीत में जो जानवर नजर आए थे उनके नाम थे बादल और मोती। साथियों कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। मैंने प्यार किया एक आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म, प्रेम और सुमन की दोस्ती का एक उसूल था कि नो सॉरी नो थैंक यू। तो ये जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस कबूतर का नाम बता दीजिए जल्दी से।

साथियों, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे असद भोपाली, संगीतकार थे राम लक्ष्मण, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया और उस कबूतर का नाम था हैंडसम। सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। कार्यक्रम सुरीला सफर अब समाप्त होता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां तीन तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। इन मौसमों में अलग अलग तरह के व्यंजन पकाए और खाए जाते हैं। खाने पीने और पकवानों की बातों से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। दरअसल इन पकवानों और व्यंजनों के साथ जुड़ी बहुत सी कहानियां और बहुत से लोकगीत भी हैं और दादी नानी के समय से चली आ रही रीति रिवाज भी। हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन के लिए खान पान के बारे में शिक्षित करना, उचित खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना और कुपोषण को दूर करना है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आयोजन भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा 1982 से किया जा रहा है। संतुलित आहार लेकर किस तरह से बेहतर सेहत पाई जा सकती है? सही पौष्टिक आहार से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटना, खान पान से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत करना, कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाती है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में मौज।

साथियों, हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे खाने में कीटाणु नहीं जाते और बीमारियां दूर रहती हैं। खाना बनाते समय हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, बर्तन सिंक खाना पकाने की सतह को धोकर साफ रखें, छिलके और कचरा फेंकने के लिए कचरा पात्र रखें। खाना बनाते समय साफ और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना पेट की बीमारियों से बचाता है। भोजन को ढककर पकाना और उसे बार बार गर्म न करना पोषण को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। बार बार गर्म करने पर भोजन के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं।

मौसम के अनुसार मिलने वाले फल सब्जियां, सीजन के दौरान ये चीजें भारी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण दाम भी कम होते हैं और लंबे समय तक ताजा रखने के लिए केमिकल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के साथ एक साथ बैठकर भोजन करने से सेहत बनती है और आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। शांति से साथ बैठकर खाने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है। परिवार के साथ खाने से रिश्तों में मजबूती, प्यार और अपनापन बढ़ता है। दिन भर की थकान मिटती है और मानसिक शांति मिलती है।

साथियों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के सही खानपान पर विशेष ध्यान देकर हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को सही तरीके से मना सकते हैं। आज की त्रिवेणी अब संपन्न होती है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टियो फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने AI डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ MOU हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के IMEC इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित

0: वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री टियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री टियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
2: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर News on AIR Official को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैस्डैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
4: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का

0: दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
4: रांची में गेतलसू डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्ण रेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा

साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए बहार आई।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है खिलौना।

0: आचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को अगले गीत में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: 40 मिनट पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रही हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।
1: वो तो लग रहा है
2: जी।
1: आज क्या खाए थे तुमने नाश्ते में?
2: नाश्ते में मैंने खाया है बढ़िया सा पोहा।
1: पोहा? और लंच में?
2: लंच में खाया है मैंने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सभी कुछ खाया, और साथ में दही।
1: और सलाद खाया कि नहीं खाया?
2: वो तो जरूरी है, सलाद के बिना तो मजा नहीं आता खाने का।
1: और जब हम नाश्ता करते हैं तो अंकुरित भोजन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छा पोषण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ ना कि अपने पोहे में थोड़ी सी अंकुरित मूंग की दाल है, है ना, और या कुछ इस तरीके की चीजें अंकुरित जो होते हैं, चने होते हैं, वो कुछ मिक्स करके अच्छे से एक नई तरीके की रेसिपी बना लेती हूँ। उसमें टमाटर वगैरह डाल के काट के बहुत अच्छा सा बन जाता है।
1: क्या
2: खाने में स्वाद होता ही है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
1: सबसे बड़ी बात है कि हमें जो भी खाना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए। और इन दिनों में पोषण सप्ताह मना भी तो नहीं है। और देखिए, कहते हैं कि अगर बचपन में हमने पौष्टिक भोजन कर लिया है तो ताउम्र हम स्वस्थ रह सकते।
2: बिल्कुल, वो ग्लो जो होता है ना, वो हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं
1: होती है कि हम बड़े ब्रांड की पाउडर, क्रीम, काजल ढूंढते हैं बाहर जा जाके, खास तौर से महिलाएं। जब हम मेकअप से जो है लिपा पुता चेहरा लेकर बाहर निकल तो जाती है, लेकिन असलियत तो सामने आ ही जाती है।
2: बिल्कुल,
1: आपके भीतर जो चल रहा है वो सामने आ जाता है आपके चेहरे पर। अगर आप भीतर से कमजोर है तो आपका चेहरा बता देता है।
2: बिल्कुल बता देता है कि कहाँ आपको किस चीज की कमी हो रखी है।
1: हाँ, आपको सही भोजन मिलना चाहिए, सही पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है और बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति मिलती है।
2: बिल्कुल, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो एकदम सही बना रहता है।
1: हाँ,
2: तो जो बीमारियां हैं वो जल्दी हमें इफेक्ट नहीं करती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब बात चली कि बचपन में हमें अच्छा भोजन अगर मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है, तो हम अपने खासतौर से सखियों से कहना चाहेंगे कि हम पूरा दिन घर की साफ सफाई, घर को सुंदर चमकाने में, कार को चमकाने में, स्कूटी चमकाने में, टीवी को चमकाने में लगा देते हैं, या फिर कई बार खुद को भी चमकाने में लगा देते हैं
2: जी,
1: है ना। लेकिन जो हमारे भीतर का जो है ना तत्व, उसे हम नहीं संभालते हैं। तो अच्छा भोजन करें, अच्छा पोषण लें, और खास तौर से दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर सबसे जरूरी बात है कि समय पर उचित और स्वच्छ

0: भोजन ग्रहण करें, अपने घर वालों को भी खिलाएं, खास तौर से अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो और भी हमें ध्यान देना चाहिए
1: जी। क्योंकि ना जब हम खुद देख सकते हैं ना कि अगर हम संतुलित भोजन की बजाय कुछ बाहर या जंक मतलब बहुत इस तरह की बाहर की चीजें हम खाते हैं तो उससे क्या होता है ना, और जब हम घर की से बनी हुई चीजें खा रहे होते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एकदम पीला पड़ा सा चेहरा या हमारा वेट बढ़ जाता है, जबकि घर की चीजों को हम अगर खा रहे होते हैं, संतुलित भोजन खा रहे होते हैं ना, तो हमें बाकी चीजों से छुटकारा मिल जाता है।
0: और सबसे बड़ी बात, जो बीमारियां आजकल चल रही है ना, वो इसी कारण है कि हम जंक फूड पर बहुत विश्वास करने लगे हैं, डिब्बा बंद खाना देखने लगे हैं, 2 मिनट जो खाना बनने लग गया है उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे। देखिए रिजल्ट सामने है, हम लोग बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो ये सभी कारण है। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि अच्छा खाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा पकाएं और अपने बच्चों को घर परिवार वालों को अच्छा पोषण भी दें। तो आज के विषय क्या है ये भी लगे हाथ तो बता दें, तो उसके बाद एक प्यारा सा गीत हम पेश करते हैं।
1: हाँ, आज हम विषय भी लेकर आए क्योंकि पोषण सप्ताह चल रहा है, तो वृद्धावस्था और पोषण की जब हम एक एज में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सुझाव भेजिए और साथ ही कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम बात करेंगे आज निधु मोलू सुमति जो की कला क्षेत्र में है, और मुझे कुछ कहना में आज बहुत मजेदार बात होने वाली है।
0: क्या?
1: वो है बचपन के मजेदार अंधविश्वास। वही ना कि आपने ये बीज खा लिया अब तो बस पेड़ निकलेगा, क्योंकि पानी तो हम पी रहे हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो अब ये बीज बस
0: पेट में निकलेगा। और हम सच्ची मान लेते डर भी जाते थे, या दांत टूट जाता तो कहते अरे चूहा ले गया इसका दांत, कहां ले गया, है ना। तो हम दांत को तोड़ के गड्ढा खोद के अंदर डाल देते थे, एक अंधविश्वास की ना हमारा दांत कोई ले ना जाए चूहा। तो आपके जीवन में भी इस तरह की बातें हुई होंगी जहां आपको इस तरह से बताया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या
1: आप बताते हैं
0: अपने बच्चों को, है ना
1: जी। तो बताइए हमें। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे टिप्स के बारे में जो कि रसोई को चमकाने में सहायक हो सकते हैं।
0: रसोई को चमकाने में मतलब
1: हमारी रसोई चमकती रहे ना, एकदम बढ़िया रहे, एकदम साफ सुथरी रहे, उसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
0: बिल्कुल, कैसे आप अपनी रसोई को साफ सुथरा,
1: तो आप हमें अपने सुझाव भेजिए, आप क्या करते हैं अपनी रसोई को चमकाने के लिए।
0: रसोई को गंदा तो नहीं रखते हैं, है ना। आजकल इस पर भी काफी चर्चा हो रही है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट, जो गंदगी या अस्वच्छता का जो माहौल है, उस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप अपने घर की रसोई को कितना साफ सुथरा रखती हैं ये हमें बता सकती हैं। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं,
1: एक गीत सुन सकते हैं।

0: बहुत सुंदर गीत हमने सुनवाए हैं अपने श्रोताओं को आरती
1: जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गीत था।
0: हाँ, और संगीत भी कहते हैं कि वैसा ही काम करता है जैसा कि आपके जीवन में।
1: बिल्कुल, खाना हो या दवाई हो क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए आज मैं बात में आपको कह रही होगी ना, खाने की बात।
0: हाँ, खाना बहुत याद आ रहा है आज और मुझे तुम्हारा पोहा भी याद आ रहा है जिसमें तुम दुनिया भर की अंकुर दालें डाल के खा जाती हो चुपचाप से, और वो राज तुमने आज खुला है हमारी सेक्शन में
1: बना के लाऊंगी आपके लिए।
0: चलिए देखते हैं। तो बात चल रही थी पोषण की, पोषण सप्ताह भी चल रहा है और पोषण पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं अपने जीवन में। अभी हमने कहा कि घर के जो, वैसे तो सभी सदस्यों को अच्छा पोषण लेना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोषण कैसा हो, आज विशेष रूप से हम वृद्धावस्था और पोषण पर बातचीत करना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जहाँ अनुभवों की एक दौलत होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है ना, वो एक जो उम्र हम वहां पहुंच जाते हैं ना, तो अनुभवों की उम्र होती है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी सजगता और सावधानी का परिणाम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर में कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन भी आने लगते हैं, क्योंकि जो आते ही है हमेशा, तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी बदल सकती है और मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है और पाचन और भूख में भी बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस उम्र में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आरती कि संतुलित और जो पौष्टिक आहार है वो हमारे बुजुर्गों को सक्रिय रहने और शरीर की ताकत बनाए रखने और दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद भी करता है। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या शामिल हो। जैसे शरीर की मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे घर के भोजन में दालें हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, और जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए अंडा खाने का भी आपकी आदत हो अंडा खाना, तो आप इसको भी हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा फल है, सब्जियां हैं, अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं। रंग बिरंगे फल, सब्जियां, ये जो है भोजन को पौष्टिक बनाते हैं और इनमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर के वृद्ध हो वो नानुकुर भी करते हैं,
1: बहुत ज्यादा
0: ये पसंद नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, उन्हें समझाना है कि साबुत अनाज और रेशेदार भोजन वृद्धावस्था में आपके पाचन को बेहतर बनाता है और इसमें जो हड्डियों का आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खास अच्छा हो जाता है। दूध है, दही है, ये खाद्य पदार्थ आहार का हिस्सा बनाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल। और किसी विषय जो कोई विशेष जो पोषक तत्व होता है कि उसकी आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है।
0: हाँ।
1: किसी के अंदर किसी की चीज की कमी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या हम खाएं कि वो उससे उसके जरिए हमारी जो पोषण आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसके साथ अक्सर ये भी देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी भूल जाते हैं और शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। इसलिए दिन भर उचित मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्य के जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि जूस हो गए, तरह तरह के फलों के, तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बेहतर बनाकर कहते हैं कि उम्र को भी आप मात दे सकते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन कहते हैं पता ही नहीं चलता है। एक एड भी आया करता था, है ना, इतने साल के बुजुर्ग या जवान। हाँ। तो मतलब लगता था कि अरे इतने बुजुर्ग आदमी भी जवान की तरह दौड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये आप अपने भोजन पर ध्यान रखकर कर सकते हैं। संतुलित भोजन लें, भोजन बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक नमक है, कई बार ऊपर से नमक डालने की जो हमारी गंदी आदत है ना, उससे हमें बचना चाहिए। बहुत मीठी चाय, चीनी डाल
1: एकदम, कुछ लोग एकदम
0: शरबत पी रहे हैं जैसे, है ना, वो कैसे पीते हैं पता नहीं। और अत्यधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ हैं उनका भी सेवन हर बार नहीं करना चाहिए।

0: भी कभार आपकी इच्छा हो गई एक अलग बात है।
1: और इसके साथ साथ भोजन को व्यक्ति की चबाने और पाचन की क्षमता के अनुसार ही तैयार करना जरूरी है। जो भी भोजन बना रहा है ना, या आप खुद भी बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उस हिसाब से आप भोजन को बनाएं। जैसे कि दांतों की समस्या होने पर नरम और पौष्टिक भोजन को ही चुनना चाहिए और भोजन का समय नियमित रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का अनुशासन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल, आप अगर एक समय निश्चित कर लेते हैं तो शरीर उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि किस तरह से शरीर वो आपको संकेत दे देता है कि भोजन का वक्त हो गया, भोजन कर लेना।
1: बिल्कुल, आपके पेट में गुड़गुड़
0: होने लग जाती है और कई बार पता है हम देर कर देते हैं तो फिर कई और दूसरी सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी
1: या सिर में दर्द हो जाएगा।
0: सिर में दर्द हो जाएगा, तो समय समय पर आप भोजन लें और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अच्छे भोजन के साथ हल्की शारीरिक जो एक्सरसाइज है, वो गतिविधि है जिसे हम कहते हैं, वो भी आप करते रहें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। टहले है ना, दिनचर्या का आपकी हिस्सा होना चाहिए टहलना। हाँ, किसी नई व्यायाम योजना को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल, और वृद्धावस्था कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव, समझ और जीवन की उपलब्धियों का समय होता है। सही पोषण, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, उचित गतिविधि और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि स्वस्थ भोजन शरीर को शक्ति देता है और अपनों का प्यार जीवन में ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो अभी आपने कही ना कि दांतों की जो समस्या उम्र के बाद शुरू हो जाती है, तो जो घर में खाना बनाने वाली है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर के बुजुर्गों को वो खाना दें, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने खाना तो रख दिया लेकिन उन्हें चबाने में बहुत टाइम लग जा रहा है। कई बुजुर्ग हमने देखे घंटों खाते हैं उस खाने को, ठंडा हो जाता है खाना, बेस्वाद हो जाता है क्योंकि वो चबा नहीं पाते। तो ऐसे समय में आप ध्यान रखिए, उसको रोटी है तो चूर के दें, चावल है, दाल चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा दें ताकि जो बुजुर्ग है वो उसे आराम से खा सके।
1: बिल्कुल,
0: और
1: गर्म रहेगी रोटी तो कड़ी नहीं होगी,
0: आपने फटाफट रख दिया कि मैंने तो अपना खाना पूरा दे दिया है, अभी खाएंगे। जब वो खाते खाते घंटों बीत जाते हैं क्योंकि उनके दांत काम नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात है जैसे कि प्रोटीन युक्त जो दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, अंकुरित है, अनाज जो है, अंडा है, आप ले सकते हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन और मिनरल्स के लिए आप ये ले, साबुत अनाज जैसा कि रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया आप खिला सकते हैं, पानी तो आपने भी बताया कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समय समय पर बुजुर्गों को याद दिलाते रहें, और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और कम नमक की बात आपने बताई और सबसे बड़ी बात कम चीनी, और हो सकता है तो चीनी छोड़ ही देना एक समय बाद, क्या जरूरत है चाय में चीनी डालने की या बहुत ज्यादा मीठा खाने की, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो शुगर है वो नियंत्रित रहेगी। तो जो बुजुर्ग है थोड़ी थोड़ी मात्रा में आसानी से पचने वाला संतुलित भोजन उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना, अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो। घर में जो भी गृहिणी है या बाल बच्चे हैं वो ध्यान रखें घर के बुजुर्गों का और समय समय पर उन्हें गर्म भोजन दें और स्वच्छ भोजन दें।
1: बिल्कुल, और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा भी हमें लिखकर। तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि वृद्धावस्था में सुपाच्य स्वास्थ्य वर्धक भोजन करना चाहिए, फल और सब्जी अधिक खाने चाहिए, तले भुने भारी भोजन नहीं करने चाहिए, सूखे मेवे, कद्दू के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में लेने चाहिए।
0: और क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है?
1: हाँ, बिल्कुल लिखा है कि मैंने आज अंकुरित, हाँ उन्होंने अपना खुद का लिखा है कि मैंने आज अंकुरित मूंग और चने को पीस कर उसके चीले बनाए, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे भी सीनियर्स को अंकुरित अनाज थोड़ा उबाल कर खाना चाहिए, उसमें कुछ भुने हुए सीड्स दो होते हैं और हल्के से चाट मसाला या नींबू का प्रयोग करें, प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ रसेदार जो सिट्रिक जो फल होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको आप उनका सेवन करें। तो इन्होंने इतना अच्छा चीला बनाया भाई,
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमें प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहे और दूसरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: है ना, चूंकि बात वृद्धावस्था की चल रही है इसलिए उनको खास ध्यान दिया जा रहा है कि वृद्धावस्था में पोषण का कितना बड़ा योगदान है। एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था और पोषण बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बूढ़ा होने पर भूख और ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए कुछ नया खाने की इच्छा होती है। इस सब्जेक्ट से पहले कविता सुनाना चाहता हूँ, वो यारों की हंसी ठिठोलियां, वहां नेताजी का बुत लग गया, देखो विकास सब चर गया, चौमासे बरसाती नदी वहां बन गया, नदी अब बन गई नाला, नाले भी हो गया गड़बड़झाला। कुछ कविता लिखने की कोशिश की है।

0: और लिखती है कि हमारे दादी के घर वहाँ सब्जी रोटी और घी साथ होता है, मतलब कि घी से सनी रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ।
1: अच्छा ये भी अच्छी चीज है, घी खाना ही चाहिए। सोचते हैं लोग कि ना घी खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप घी खाइए, उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं।
0: हाँ, लेकिन घी हरे, वही बात होती है कि आपका शरीर क्या कहता है। अपने शरीर के संकेतों को ध्यान में रखिए कि घी पचता भी है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, हल्का फुल्का ही खाए, बहुत ज्यादा नहीं
0: हिसाब से। और एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का वो चरण है जब व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बुजुर्गों को परिवार के प्यार, सम्मान, देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका अनुभव और जीवन की सीख समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब व्यक्ति को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके खाने में सभी प्रकार की दालें, चावल, प्रोटीन से युक्त चीजें और कैल्शियम की कमी उनको न होने पाए। इसके लिए दूध वगैरह ये सब जरूर शामिल करें उनके खानों में। ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज दें जो उनको सूट करती हो। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस उम्र में कुछ भी खिला देना बुजुर्गों को सूट नहीं करता है। इसलिए कोई भी ऐसा खाना ना दे जो उनके सेहत से खिलवाड़ करे।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ टेस्टी वैरायटी खाना हफ्ते में एक बार ठीक रहता है, और सप्ताह में एक दिन सिर्फ दूध, फल, फ्रूट खाना अच्छा होता है। नमक और चीनी फ्रूट वाले दिन परहेज करनी चाहिए, और मैंने करके देखा है तो लग रहा है कि ये सेहत के लिए ठीक है। सेहत ठीक रहे तो दुनिया अच्छी लगती रहेगी। बचपन के ये सब बातें इन्होंने लिखी है।
0: ये बात तो सही कहा इन्होंने, अगर सेहत ठीक है ना
1: सब कुछ अच्छा लगता है।
0: सब कुछ अच्छा लगता है, अगर सेहत सही नहीं होती ना तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब बेकार लगता है।
1: बिल्कुल। और अभी एक गीत सुने तो और अच्छा लगेगा,
0: हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो ऐसा ही लगता है ये जमी गा रही होती है, आसमान गा रहा होता है ना,
1: हर जगह संगीत सुनाई देता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं किनकी, नीदुमोलु सुमति की, जो कि कला क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। तो पद्मश्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इनकी। तो आज हम बात कर रहे हैं नीदुमोलु सुमति की, जिन्हें दंडामुड़ी सुमति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रसिद्ध मृदंगम वादिका और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की वो बहुत बड़ी कलाकार है और वो भारत की शुरुआती महिला मृदंगम वादकों में गिनी जाती है।
0: क्या बात है।
1: और लय विन्यास की पहली महिला कलाकार के रूप में भी उनका उल्लेख है। और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के एलुरु में।
0: सबसे बड़ी बात, और देखिए ना मृदंग बजाना, अरे बड़ा मुश्किल काम है। ज्यादातर हमने पुरुषों को ही देखा है, है ना, लेकिन महिलाओं ने भी बहुत जगह अपने जो है कदम रख दिए हैं।
1: बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर, कैसे कैसे मृदंग बजाते,
0: गजब गजब। तो जब नीदुमोलु सुमति को हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और पता चला कि इनके जो माता पिता है, नीदुमोलु राघवैया और नीदुमोलु वेंकट रत्नम्मा इनके माता पिता है। उनके पिता स्वयं मृदंगम के थे। उन्होंने सुमति की संगीत प्रतिभा को बचपन से प्रोत्साहित किया और सुमति ने 6 वर्ष की उम्र में मृदंगम सीखना शुरू कर दिया था।
1: बहुत
0: उनके पिता उन्हें संगीत कार्यक्रमों में ले जाते थे, जिसे उन्हें मंच और शास्त्रीय संगीत की दुनिया को करीब से समझने का भी मौका मिला।
1: बिल्कुल। और लगभग 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुमति ने मृदंगम में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरा किया और 1964 के बाद उन्होंने प्रसिद्ध मृदंगम कलाकार दंडामुड़ी राममोहन राव से प्रशिक्षण लिया और राममोहन राव आगे चलकर उनके गुरु के साथ साथ उनके जीवन साथी भी बने। अपने गुरु से उन्होंने मृदंगम की जटिल तकनीकों, लय, ताल और प्रस्तुति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा।
0: बिल्कुल सही कहा। और लगातार जब अभ्यास के कारण वे धीरे धीरे संगत कलाकार से स्वतंत्र और एकल प्रस्तोता के रूप में स्थापित हो गई। नीदुमोलु सुमति की यात्रा जो है केवल एक सफल संगीतकार की कहानी मात्र नहीं है आरती। उन्होंने ऐसे समय में मृदंगम को पेशेवर के रूप में अपनाया जब इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह साबित किया कि कला में सफलता का आधार साधना, समर्पण और योग्यता है।
1: बिल्कुल। उनकी उपलब्धियों ने मृदंगम जैसे पारंपरिक वाद्य के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने और महिला कलाकारों के लिए रास्ते खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मृदंगम पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे वातावरण में भी सुमति ने अपने प्रतिभा और निरंतर साधना से अलग पहचान बनाई। उनके वादन में ताल की सटीकता, लय की जटिलता और प्रस्तुति का संतुलन विशेष

0: रूप से उल्लेखनीय रहा,
1: बिल्कुल सही कहा। और अपने लंबे संगीत जीवन में सुमति ने अनेक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की, जैसे एम एस सुब्बुलक्ष्मी, महान गायिका सुभालक्ष्मी, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण, जोशी, हाँ, चिट्टी बाबू, एन रमणी और यू श्रीनिवास जैसे प्रमुख नाम जो है हम शामिल करते हैं। और इससे उन्हें देश के प्रमुख संगीत मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला, साथ ही मृदंगम वादन से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी बहुत ही मजबूत हुई।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, अभी हम लोग का समय हो रहा है एक अंतराल का,
1: और लेते हैं एक अंतराल
0: फिर बात।

0: इस अंतराल के बाद सभी हमारी सिक्योर सखाओं का स्वागत है। तो बात चल रही थी मृदंगम की।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुमति जी की, जो मतलब उनके मृदंग को सुनकर ना ऐसा लगता है कि सारे दिमाग के पूरे शरीर के तार एकदम झनझना उठे।
0: मैं तो पता है उनके बारे में बात करते करते खो भी गई हूँ। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने मृदंग बजाते हुए देख रही हूँ। इतना मतलब गहरा उनका अभ्यास जब देखा और पढ़ा तो लगता है कि कितना कलाकार खुद को मांझता है, तब जाकर वो एक अच्छा
1: कोई तपस्या ही तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुमति ने वर्ष 2000 में लय वेदिका नामक संस्था की स्थापना की। उनकी इस संस्था का उद्देश्य मृदंगम और ताल प्रधान संगीत को प्रोत्साहित करना था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं और संगीत संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल से उनकी भूमिका भारतीय ताल परंपरा के संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक की बन गई।
0: बिल्कुल। और वर्ष 2015 में सुमति ने सता मृदंगा वाद देने वाली नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 100 मृदंगम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर उनके गुरु और जीवन साथी दड़ामुड़ी राममोहन राव को श्रद्धांजलि दी। और ये कार्यक्रम उनके संगीत जीवन की उल्लेखनीय पहलों में गिना जाता है। सुमति को उनकी कला के लिए कई सम्मानजनक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है।
1: बिल्कुल, उनकी उपाधियों की बात करें तो मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर, मृदंग विन्यास, कला भारती और नादलय साम्रागी जैसी उपाधियां शामिल हैं। निरुमोलु सुमति को उनके लंबे संगीत सफर में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें मद्रास म्यूजिक एकेडमी का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, पालानी सुब्रमण्य पिल्ले मेमोरियल पुरस्कार उनको मिला और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं।
0: बिल्कुल। और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार का, पालानी सुब्रमण्य पिल्ले मेमोरियल अवार्ड, और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने निदुमोलु सुमति को पद्मश्री से सम्मानित भी किया।
1: वो है भी इतने सारे इन पुरस्कारों के को बहुत ज्यादा उनके मिलने भी चाहिए। इतना उनका जो पूरा व्यक्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।
0: बिल्कुल, ऐसी महान कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: संगीत ने जो है झूमने पर मजबूर कर दिया।
1: बहुत प्यारा गीत है ना। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन की तरफ, थोड़ा सा जाने वाले हैं है ना। और हमें
0: बचपन की तरफ जाने वाले हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम बचपन की तरफ ही थे।
1: सही बात है। और हमारे जो सखी हैं, जो सखा है, सब अपने अपने किस्से लिख के भेज रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उनको भी ये अंधविश्वास थे बचपन में।
0: हाँ, हाँ।
1: जो हमें सिर्फ हमें नहीं थे,
0: उन्हें भी थे। लेकिन ये बात भी पक्की है कि बचपन में हमें नहीं पता होता कि अंधविश्वास है, हमें बताया जाता है अरे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा,
1: सच वो डर रहता है।
0: हाँ, तो अंकित हो जाते थे। हाँ। इस बाल मन पे ना, अरे ऐसा नहीं करते, फिर बड़ों के हम भी वही बात आगे कहते रहे। तो ये बचपन में हमें जिस तरह से समझाया गया, डराया गया, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो हम बचपन में समझते थे सचमुच गब्बर सिंह आने वाला है।
1: हाँ, बिल्कुल, कोई ना कोई आगे पकड़ लेगा अगर सोए नहीं तो।
0: तो सब चीजें हमें बताई जाती थी, कही जाती थी, जिसे हमारे मन में हम अंकित कर लेते थे।

0: था हमारा, तो वो अब जब बड़े हो गए हैं तो हमें हंसी आती है कि अरे हम कैसे किया करते थे। तो क्या लिखते हैं श्रोता?
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में ऐसा था कि बहुत भोला बहुत होता है बचपन, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम भाई बहन छोटे थे तो थूजा के पेड़ की पत्तियों को, जिसे हम लोग विद्या का पेड़ भी कहते थे, अपनी किताब में रख लेते थे, क्योंकि उससे विद्या आ जाती है, ऐसा हम लोगों को अंधविश्वास था। और जिस विषय में ज्यादा डर लगता था उसमें खूब सारी पत्तियां रख लेते थे कि अब कितनी विद्या है ये तो पता नहीं, मतलब पत्तियां रख लेंगे पढ़ाई नहीं करेंगे,
0: पढ़ाई नहीं करके भी हम
1: विद्या आ जाएगी हमारे अंदर।
0: हर पेज के अंदर मोर पंख भी हम रखा करते थे बचपन में, सहेलियां देखती थी किसकी किताब में कितने मोर पंख हैं, कॉपियों में कितने मोर पंख है ना। और कई बार पेड़ जो पत्तियां हैं वो भी हम रखा करते थे, तो कई बार शौकिया भी रखते थे, किसी पेड़ की जो पत्ती हमें पसंद होती थी ना उसका कलेक्शन करके भी हम लोग अपनी नोटबुक में रखा।
1: पीली पड़ जाती थी उसको अच्छा लगता था देखने,
0: तो ये ऐसा भी होता था। और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की वो दुनिया जहाँ न मोबाइल था, न इंटरनेट की चिंता थी, न सोशल मीडिया का दबाव था, बस शरारती थी, खेलकूद, दादी नानी की कहानी और उनके बताए कुछ ऐसे नियम जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मान लेते थे। याद है बचपन में अगर कोई कहता था कि रात में नाखून मत काटो तो हम तुरंत नाखून काटना बंद कर देते थे। कोई पूछता क्यों तो जवाब मिलता बस मत काटो अच्छा नहीं होता। अब हमें ये जानने की फुर्सत ही कहाँ कि अच्छा नहीं होता, बड़ों ने मना किया है मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
1: और एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि फल जो होता है उसका बीज अगर निकल जाओगे तो पेट में पेड़ उग जाएगा।
0: हाँ
1: ऐसा होता था ना,
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और श्रोता लिखते हैं कि अगर आंख फड़क जाए तो जो है घर में कोई भविष्यवाणी शुरू हो जाती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं नहीं कुछ खबर आने वाली है, भी दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की
1: ये जरूर पूछा जाता था कि आंख कौन सी फड़की।
0: डर के मारे पता क्या करते थे, उसके ऊपर कागज काट के छोटा सा आंख को चिपका लेते थे, हमें ऐसा कहा जाता था। और झाड़ू पर पैर मत रखो की बहुत सारी बातें हमें कही जाती थी, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं क्यों, बस हमने उसको सत्य मान लिया।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे समाज और परिवार में ये प्रथा रही कि किसी बच्चे का दांत टूट जाता था तो हमें सिखाया जाता था कि दांत टूटने पर उस दांत को चांद के सामने ये प्रार्थना करनी होती थी कि हे चांद बाबा मैं तुझे पुराना दांत दूं और तू मुझे नया दांत दे, इस तरह से कहना होता था। और ऐसा विश्वास था कि दांत चांद बाबा कुछ दिनों बाद हमें नया दांत भी दे देते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें प्रेरित करते कहते थे कि आप हमारा ये दांत ले लीजिए और
0: हमें दूसरा दांत दे देगी। तो मुझे अपना भी याद है आरती, जब मेरे दांत टूटा था मैं सूरज देवता के सामने खड़े होके कहती थी सूरज देवता मेरा ये दांत टूट गया है मुझे नया दांत दे दो ना। तो ये क्योंकि कहा गया होगा ऐसा, मुझे वो सीन अब याद हो आया कि मैंने भी बचपन में ये किया है ना। अब समझ आता है कि हम कितने भोले हुआ करते थे, जैसा कहा जाता था हम मान लिया करते थे।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका निदान था कि अपनी उंगलियों से हवा में क्रॉस बनाओ या स्वास्तिक एक बना दीजिए आप।
0: अच्छा।
1: तो उससे मतलब उसका प्रभाव हट जाता है। तो ये बिल्ली वाला तो आज भी चल रहा है,
0: बिल्ली ने रास्ता काट दिया है
1: कितना भी जरूरी काम क्यों ना हम वहीं रुके रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: खेलते नहीं।
0: कैसा दिमाग में अंकित हो गई है कुछ चीजें, उनके तर्क कुतर्क अगर हम करने लगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम झाड़ू को देखकर ऐसे निकलते थे जैसे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो। इसके अलावा बचपन में उल्लू, छिपकली, छींक, रास्ते में कोई चीज मिलना, इन सब के भी अपने अपने मतलब बताए जाते थे। और अगर घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाया करते थे, ये तो होता था,
1: ये तो आज भी होता है,
0: दोबारा छींको, दूसरी छींक, अरे दो छींक आई है अब निकलो, है ना। कितना
1: बहुत सारी चीजें,
0: बिल्कुल।
1: और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी कि पेंसिल के छिलके दूध में भिगोकर रखने पर उससे इरेजर बन जाता है, मतलब रबड़ बन जाती है। तो हम बच्चे पेंसिल के छिलके दूध में भिगोकर रख देते थे, हालांकि कभी भी उससे इरेजर नहीं बना। ये चीज तो मैंने भी करी, कुछ नहीं बनता उससे, सिर्फ डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं।
0: लेकिन ये देखिए बचपन के वो दिन हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम कई बार भूल भी जाते हैं, और आज उस टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता कि सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। हमें तो हंसी आ रही है,
1: बिल्कुल
0: मुस्कान तो क्या कहे, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी, हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थी, दादी नानी की सख्त हिदायतें थी, माँ की डांट और हमारी मासूमियत थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था उस समय से मुझे इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके मैच देखने का बहुत दीवानापन था, तो मुझे

0: अंधविश्वास था कि अगर टेलीविजन पर मैं लाइव मैच देखूंगा तो इंडिया की जो टीम है वो हार जाएगी, इसलिए टीवी बंद करके मैं रेडियो कमेंट्री सुना करता था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। और ऐसा ऐसा मेरे साथ कई बार सच में हुआ भी था। बाद में अगर उस समय मैच के मुख्य अंश दिखाए जाते थे तो टेलीविजन पर देख लेता था। अब क्रिकेट मैच में मैं एंजॉयमेंट के लिए लाइव देखता हूँ, पर अंधविश्वास नहीं है, जो मैच जीते वो ही सिकंदर।
1: सही कहा आपने कि इतना हमें पैशन रहता था कि टीम में कब क्या हो रहा है, हम लोग इतनी शक्ति लगा देते थे उस मैच को देखने में कि हाँ। अगर उस दौरान कोई उठ गया तो हम कहते तू उठा क्यों, भी वो बॉल चली गई है ना, वो आउट हो गया प्लेयर हमारा। हाँ। यार तो इस तरह की कई बातें हमें याद आती है। मुझे एक चीज और याद आती है आरती, हमारी सहेलियां कहती थी कि जो गिलहरी है ना इसकी पूछ पर पत्थर मारो वो 25 पैसे देती है।
0: ये तो
1: हमें याद है हमारे दीवारों पे छत की मुंडेर पर गिलहरियां आती थी, हम पत्थर इकट्ठे कंकर करके उसको मारते थे। अब वो कंकर ना उसके वहां लगता ही नहीं था पूंछ पे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती थी
0: गिलहरियां, हमें पकड़ में कभी नहीं आता।
1: हमें लगता काश ये 25 पैसे दे दे हमको, काश ये 25 पैसे दे दे हमको।
0: और एक हमारे भाई साथी है वो भी लिखते हैं कि बचपन में एक और अंधविश्वास था, जैसे ही तारा टूटा दिखाई दिया तो या 5 फल का नाम ले लो या 5 उंगली मुंह में डाल लो, और हम ये करते भी थे। बहुत बढ़िया,
1: सुंदर। तो और कुछ है बताइए। हाँ, श्रोता ने
0: एक हमारे श्रोता जो लिखती है कि कोई तारीफ कर इसमें बड़े होने के बाद भी कुछ कितने अंधविश्वास में जीते हैं, जैसे बाहर निकलने पर बिल्ली का रास्ता काटना, कोई तारीफ कर दे तो नजर लगने का डर होना। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग एक मैना देख लेते थे तो लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे ही 2 मैना दिख जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो अब इन बातों पर भरोसा नहीं करती, पर मेरी सहेली जो कि मतलब जॉब करती है तो अभी भी इस बात को मानती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले तभी उसे 1 महीना मैना दिखाई दी तो बहुत मायूस हो गई कि वो कहने लगी कि इसलिए मैं अपने मोबाइल में 2 महीना की तस्वीर रखती हूँ। हम सारी सहेलियां उसकी इस बात पे बहुत हंसे, और मेरी मम्मी का कहना है कि कभी भी मुझे एक आंख मत दिखाया करो, और वो दिन भर एक आंख दिखाने में गुस्सा हो जाती।
1: बिल्कुल सही कहा, जब हम किसी एक पक्षी को देखते हैं तो कहते हैं 1 for sorrow और 2 जोड़ा दिखता है तो हम कहते हैं 2 for joy।
0: हाँ।
1: तो ये इस तरह की हमने धारणाएं बना ली हैं कि जोड़ा दिखेगा तो अच्छा कुछ होगा, अकेला कोई दिखेगा तो बुरा। हाँ। कुछ होगा, ये इस तरह की धारणाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं और गाहे बेगाहे हम उससे प्रभावित होते भी।
0: बिल्कुल, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मैसेज भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, लेकिन इतना हम गीत नहीं सुनेंगे तो फिर संगीत की कमी हो जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, प्यार तो हम अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार वालों से,
1: और हम एक दूसरे से भी करते हैं, और अपने सखियों अपने सखाओं से भी करते हैं,
0: बिल्कुल करते हैं, और अपनी रसोई से भी करते हैं, जहाँ हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता है,
1: स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि कैसे रखती हूँ अपनी रसोई को साफ सुथरा।
1: एक हमारी जो सखी है वो कहते हैं कि रसोई को चमकती साफ रखने के लिए रोज खाना बनाने के बाद गैस और काउंटर को साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से, बर्तन को तुरंत धोकर व्यवस्थित करके रखें, फर्श पर गिरे पानी या खाने को तुरंत साफ करें, सप्ताह में एक बार अलमारियों और फ्रिज की सफाई करें, सूखे और साफ कपड़ों से सतहों को पोछें, कूड़ेदान को रोज खाली करें। इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई करने से रसोई जो है वो हमेशा साफ और चमकती रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी लिखती है कि रसोई को हमेशा चमकता और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय अपनाएं। किचन सिंक की सफाई, सिंक को साफ करने के लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल और विनेगर मिलाकर घोल बनाएं। इस मिश्रण से सिंक और स्टील के नलों पर लगे हार्ड वाटर के जो दाग हैं आसानी से हट जाते हैं, बदबू भी नहीं आती है। काउंटर टॉप और स्लैब की देखभाल मैजिक बिक्स की किचन टिप क्लीनिंग जो गाइड है उनके अनुसार करें। बाबरे, बहुत ही इन्होंने तो टेक्निकली लिख दिया है। काउंटर टॉप की सामग्री के आधार पर सुरक्षित सफाई करें, घोल चुने, गर्म पानी हल्के साबुन के घोल से जिद्दी दागों को तुरंत पोंछे ताकि चिकनाई न जमे, फर्श पर तेल या दूध गिरने से फर्श है उसको साफ भी रखें। सूखा आटा छिड़क कर भी साफ रख सकते हैं, आटा सारा तेल सोख लेता है जिससे 5 मिनट बाद अखबार या कपड़े से पोंछने पर चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है। तांबे के बर्तनों को चमकाना है तो पुराने और काले पड़ चुके तांबे और पीतल के बर्तनों के बेस को साफ करने के लिए टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें। केचप लगाकर कपड़े से रगड़ने पर बर्तन तुरंत चमक उठते हैं और किचन का हर कोना जिद्दी और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि रसोई में सभी दाल चावल मसाले जो भी हैं या तो उनको ट्रांसपेरेंट जो ऐसे दिखते हैं जो ऐसे डिब्बों में रखें और उन पर नाम लिख देने चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। हर बार भोजन बनाने के बाद आसपास गिरे सभी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। मसालों और दाल आटे के डिब्बे को भी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत साफ करते रहने से रसोई साफ रह सकती है। एक ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वहां पे फैन लगा होना चाहिए जिससे कि रसोई में दम घुटन सी ना हो, और धूप आने से ऐसी कोई खिड़की भी होनी चाहिए और हवा के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो पाने से रसोई का वातावरण शुद्ध रहता है। कुछ सफाई हफ्ते में और महीने भर में एक बार करनी ही चाहिए। जो शुद्ध रसोई में भोजन शरीर जो करते हैं बनाते हैं तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक लिखते हैं कि बारिश के मौसम में रसोई में नमी, सीलन और चिकनाई जल्दी होती है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे साफ सुथरा और चमकदार रखा जा सकता है। बहुत सारे इन्होंने उपाय लिखे हैं, और इसके अलावा लिखते हैं कि किचन साफ सुथरा होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कुछ सब्जियां काटें उनके छिलके

0: को अच्छी तरह से समेटे फेंके नहीं, कभी कभी छिलके जमीन पर पड़े रहते हैं और उनसे पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा, बच्चे केला खाते हैं छिलका फेंक देते हैं तो कोई आएगा अचानक पैर फिसलेगा सड़क पर, कहीं आप धड़ाम से गिर जाएंगे।
1: बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान रखें, तो क्योंकि रसोई ऐसी जगह है ना कि अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो हाँ। जो खाना पड़ा रह गया अगर वहाँ पे तो चूहे या इस तरीके की चीजें
0: कॉकरोच आ जाते हैं। बिल्कुल, पतंगे जो है वो घर में होते ही है, और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी

0: कॉकरोच
1: बिल्कुल कीट पतंगे जो है वो घर में होते ही हैं, और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी रसोई में जरूरत हो।
0: खाली डिब्बे जमा मत करिए,
1: बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं शौकिया, और किचन में और सिंक में दुनिया भर के बर्तन लगा देती हैं गृहिणियां दिन भर कि शाम को साफ कर लेंगे या बाई आएगी तो अगले दिन मांज लेगी। वो जो ढेर होता है बर्तनों का वो घर में एक अलग सी स्थिति पैदा कर देता है, फिर ऐसी स्थिति में खाना बनाना भी जो है अच्छा नहीं लगता
0: और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक
1: है। बिल्कुल, स्वास्थ्य से तो हम खिलवाड़ करते ही है, और बहुत कुछ चीजें जो है हमारे घर की गृहिणी पर निर्भर करती है कि वो अपनी रसोई को किस तरह से साफ सुथरा
0: रखती है। जो फालतू के सामान उनको जमा मत करिए।
1: हाँ।
0: और इस समय एक छोटा सा गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल
0: प्यारा सा।

0: आरती बहुत सुंदर गीत था ये, और मुझे लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा नाम गुलमोहर रख दूं। और पता है गुलमोहर का क्या होता है, गुल यानी फूल, मोहर मतलब चमक, जो सुंदर है, जो शोभित है, यानी गुलमोहर जो एक सुंदर पेड़ का नाम भी है जिसमें चमकीले लाल नारंगी फूल खिलते हैं, और इसलिए ये नाम खुश सुंदरता खुशहाली रंगों और प्रकृति की शोभा का हम प्रतीक मानते हैं। और तुम अभी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, खिलाती भी सुंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको।
0: तो चलिए अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं। तो इस कार्यक्रम से आज मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर से बात कर रहा
0: हूँ। मैहर से? भाई मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सके?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, वो गाने के बोला जीदा अपने दिलवर से होने लगी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे थे मैडम।
0: नाम आपका?
1: जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मैडम।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस आपने मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम,
0: ठीक है। तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी आप बातचीत कर रहे हैं खत्म, आपको सुना रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम मंगला काशियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साक्य बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: साक्य?
0: साक्य, अच्छा बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में बताइए।
1: हमारा गांव तो देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी करता हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है।
0: तो आप
1: धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा बढ़िया, तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है।
1: जी जी जी
0: जी, बताइए। गानों के शौकीन है, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी।

0: बिल्कुल।
1: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
0: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश है, किशोर कुमार है, लता मंगेशकर, आशा भोसले।
1: जी, इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा, बताइए फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: फिल्म है जीने की राह।
1: जीने की राह
0: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए।
1: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने, और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
0: जी बिल्कुल
1: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

कमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज़ सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम, वैसे आवाज़ तो पहचान ही चुकी हूँ मैं।
1: जी हसीना जी मंसूरी बोल रही मैडम, पालदा नाका इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही है इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए।

0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी।
1: कमी अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते हैं तो बर्तन में ये टब में पानी लेके बर्तन मांजते ही ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट में बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता बहुत मद्दा करके धोते हैं, आराम से बर्तन धोते, और कहीं पर भी रास्ते में जाते नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते, और घर में भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता तो बहुत गुस्साती चिल्ला देते हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर। और आपका काम काज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही बहुत मुश्किल से निकल।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है बढ़िया, तो आवाज में तो कोई समस्या नहीं दिख रही है आपकी, आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया। हाँ। बढ़िया आ रही
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए
1: मैडम? फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल है आएगी आएगी आएगी किसी को हमारी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता दीदी जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगाफाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है, हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है?

0: तुम्हार को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे।
1: जी जी जरूर। हाँ तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की। वैसे तो दाल चावल
0: बोले तो मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है गरम मसाला।
1: अच्छा जी जी। तो किसी विशेष दिन बनती है क्या ये खिचड़ी की रोज खाई जाती
0: है? नहीं नहीं नहीं विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगापाटा बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
1: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वाद भोजन नहीं कहेंगे लेकिन हाँ जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है। है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए।
0: पर नाश्ते में खिचड़ी मिलती है और भजिया मिलता है
1: तो बना भी लेते हैं। आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन है?
0: नहीं नहीं बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
1: अच्छा अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
0: हाँ होटल है, होटल है।
1: अच्छा,
0: वारंगापाटा में होटल है।
1: क्या बात है। अब देखिए हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगापाटा जाने का। वैसे
0: भी मिलेगा खिचड़ी नाश्ता और खुश हो जाएंगे खाने के बाद।
1: वैसे जिस शहर में जाए जिस जगह पे वहाँ की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
0: हाँ हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
1: अच्छा क्या बात है भाई। चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है समय?
0: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का।
1: हाँ
0: महंगाई मार गई।
1: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

0: उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी।
1: उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने इसे किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे। मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए।

0: और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए।
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी, जी जी
0: जी, तो बताइए वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाव मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बाकी घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडरलैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे है यहाँ।
0: क्या खाने को?
1: छोले भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं और बहुत सारे फिल्में।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पंजाबी जैसे ये एक लाइन है, ओ पेके जान वाली है नी किन्ना, और हो नी किन्ना, है नी किन्ना चीर लाएंगी। ये गाना पंजाबी है जी हमारा।
0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया,
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर है यहाँ पे, हम भी मशहूर है मैडम यहाँ पे है। ऐसी
0: अच्छा,
1: बात
0: आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो के लिए मशहूर है, जो ये प्रोग्राम चलता है ना।
0: हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या बात है।
1: जी जी जी जी।
0: और अपने बारे में बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है।
0: अच्छा,
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो,
0: तैयार
1: करो,
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अष्टम बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है।
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए।
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम, किस्मत में साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया।
1: हाँ जी,
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपने के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी जी जी,
1: बिल्कुल मैडम। यहाँ वहाँ पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कब किस्मत बदल दे। और देखो, मैंने वहाँ ऐसा देखा कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे।
0: जी, बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी
1: शूटिंग में जाता था, मुझे उसका काम मिला था, लाइट मैन का।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया।
1: लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा,
1: तो फिर मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं, उनके साथ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो बात खास सुनी होगी एक दिन रात को जरा सी बात पे, मैं बिना बताया उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा,
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा या तो यहाँ पे मेरा होटल था, उस टाइम 10-10 वर्कर काम करते थे। तो मैं इसी घमंड में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहाँ मुझे झिड़के मार रहे हैं। लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी, अगर सह जाता तो आज मैं कामयाब होता।
0: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहाँ नहीं रहना चाहते हैं।
1: जी जी,
0: तो ये
1: जी,
0: आपने जी, अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी है धर्मेंद्र जी की जो बहुत पसंद?
1: सारी फिल्में देखी है मैडम, सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैडम, मैंने बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका, बहुत
0: प्यार है। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में ना लगता नहीं, हम क्या करें।
0: अच्छी बात है जी, इज्जत फिल्म का गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया और इतनी सारी बातें साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुना रहे हैं इज्जत फिल्म का ये।
1: उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा,
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा या तो यहाँ पे मेरा होटल था, उस टाइम 10-10 वर्कर काम करते थे। तो मैं इसी घमंड में था कि यहाँ मेरा

0: होटल में 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहाँ मुझे झिड़के मारते हैं, लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी। अगर खाया जाता तो आज मैं कामयाब होता।
1: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये आपने अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी है धर्मेंद्र जी की जो बहुत पसंद?
0: सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैडम, मैंने बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका, बहुत
1: क्या बात है। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में ना लगता नहीं, हम क्या करें।
1: अच्छी बात है जी, इज्जत फिल्म का गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया और इतनी सारी बातें साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुना रहे हैं इज्जत फिल्म का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर कौन से बोल रहे हैं मैडम जी?
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ, देखिए मैं पूरी भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
1: जी, बिल्कुल।
0: अब बताइए क्या काम काज है आपका, हमारे श्रोताओं को बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में जाने।
1: जी, बिल्कुल। देखिए मैं ट्रेडिंग शॉप है मेरा कर्जा रायपुर में मोहन जय के नाम से, और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन फैशन डिजाइनर है।
0: अच्छी बात है, क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलकर सब करते रहते हैं और उसके बाद जो है देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है।
0: जी जी।
1: तो वो सब हम एक साथ में सब काम करते रहते हैं और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया है, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती है और उस आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने?
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी। सुबह तो वर्कशॉप में रहते हैं तो रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रात को 11 बजे बंद होता है। टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: देखिए मैडम जी, इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल देवांगन के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जो बात चले तो हम ये जानना चाहते कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप
1: बहुत बहुत अच्छा लगता है। और उनका जो बाल रूप में हर एक बात में नक्षत्र जो होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी।
0: जी जी, उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने। कभी पढ़िए सूर की पद रचना, उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है। तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुददार का, और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और उसका बोल है, मत गया सुर सारी नगेरी रे, आया भी का वाका संभाल तेरी।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: खलील अहमद
0: जी। खलील जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म है पगला कहीं का और तुम मुझे यूं भुलाना कहोगे, ये गाना सुनना चाहेंगे
0: जी। अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, ईट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी जी जी जी
0: जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत निगराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम
0: जी। और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छी है जगह, बने बढ़िया, कमला पार्क है
0: जी। और गाना किस तरह का पसंद करते हैं, पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये रहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो खास हो गया ना आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियाँ पढ़ने लिखने
1: मैडम बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है,
1: यहाँ पर SSC या इंटरमीडिएट जब एग्जाम होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियाँ पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल है मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें।
1: मैम एक एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मजबूत, तेरे दिल के पास ही।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपको निमिशोता लतीफ अहमद रैना
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं। सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गाम के साइड में दूध पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है, ठंडा है या नॉर्मल है?
1: नहीं उतना गर्मी नहीं, उतना ठंडी, नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम है?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ।
0: वहाँ पर खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी, यहाँ इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया।
0: कौन सी फसल उपजती है ज्यादातर
1: यहाँ पे? ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा अच्छा, बर्फ गिरती है तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है, यहाँ
0: जम जाता है बर्फ। और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
1: वो सोनमर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है
0: जी। तो बताइए, तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे रिकॉर्ड है कोई भी सुनाइए।
0: तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी। और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2876-0288, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर लें, 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।
2: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: हे चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।

श्रोताओं, कुछ ही पलों में शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक और वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ बेल्जियम की एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने पहलगाम हमले की फिर से कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों देश आतंकवाद के बदलते खतरों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत बेल्जियम संयुक्त आतंकवाद निरोधक कार्य समूह का गठन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान

0: ज्ञापन किया। इससे पहले भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। श्रीमती सीतारामन ने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा। इस दौरान न्यायपालिकाओं के बीच संवाद और न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास से संबंधित समकालीन मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे क्षमता बढ़ाने और सिग्नल व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सिंधुदुर्ग के सावंतवाड़ी रोड तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करने के अवसर पर ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। किदांबी श्रीकांत चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हाजिर होंगे लेकर फिल्म संगीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले बॉबी फिल्म का गीत, शैलेंद्र सिंह की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और बोल आनंद बख्शी के।

खेल खेल में इस फिल्म से आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गुलशन बावरा का लिखा ये गीत। गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं अनामिका फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर टी बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। हर रोज की तरह, हर दिन की तरह, आज भी मैं आ गया आपके लिए कुछ नया लेकर। हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और ये टॉपिक हमारे फिटनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, इससे जुड़ी होती है। ये टॉपिक्स को हम एक्सपर्ट्स से लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, हमारा टीम बैठकर इसके बारे में डिस्कस करता है। बाद में सोच विचार के बाद, एक्सपर्ट्स के राय के बाद, एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार की जाती है और उसके बाद पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप केयरफुली हमारी बातों को सुनिए, ये बेहद ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स एज केयर गिवर्स। आमतौर पर दादा दादी और नाना नानी के पुराने किस्से सुनना आपने कई बार देखा होगा, अपने आप में काफी मजेदार अनुभव होता है ये। हालांकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के फायदे जानते हैं? क्या उससे वाकिफ है क्या आप? बता दें कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में खेल, पढ़ाई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वही कुछ बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना जुलना ही बड़ी मुश्किल से होता है। हालांकि

आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मददगार हो सकता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के कुछ फायदे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपका आरजे चेतन से। आजकल के ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल में सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहने वाले बच्चे अमूमन अन्य लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वही ग्रैंड पेरेंट्स के होने से बच्चे न सिर्फ उनके साथ समय बिताते हैं बल्कि उनकी बात भी मानते हैं। साथ ही छुट्टियों में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी घुलते मिलते हैं और सोशल लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर बच्चों की नादानियों को माफ करके उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जिससे बच्चों की सहनशीलता में इजाफा होता है। साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान की भावना से देखते हैं और उनकी सलाह को नजरअंदाज नहीं करते हैं। नाना नानी दादा दादी के साथ या जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ऐसे में बच्चे हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। साथ ही मुश्किलों से डरने से बजाय उनका डटकर सामना करने की यकीन रखता है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चों में समर्पण और सहयोग की भावना भी पैदा होती है। छोटे बच्चों के लिए दादा दादी बेहद जरूरी होते हैं। जो बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहते हैं वह अन्य बच्चों से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। दादा दादी अपने बच्चों को हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। केवल ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को पुरानी संस्कृति मान्यता परंपरा से जोड़ सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों में अच्छी आदतों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चे उन्हीं के द्वारा ही नैतिक गुणों को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि नैतिक गुणों की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा भी ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो कारण जिनकी वजह से बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स जरूरी होती है। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वे अपने पूरे परिवार यह तक के दादा दादी के रिश्तेदारों को भी जान जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को पुराने संस्कृति मान्यता ये सब तो सिखाई देते हैं। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनके बच्चों में नैतिक गुण जरूर हो। ये नैतिक गुण ही जीवन को जीने का तरीका बदल सकता है। इसीलिए नैतिक शिक्षा के लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक अच्छा विकल्प है। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उनके अंदर नैतिक गुण लाने में बेहद सहायक है। हर बच्चा बड़े बुजुर्गों से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। ये पाया गया है कि बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना बेहद पसंद होता है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होती है और वह हमेशा खुश रहते हैं। उन्हीं से बच्चों की सुरक्षा की भावना भी एहसास होता है। उनके द्वारा दिया गया प्यार ही उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब भावनात्मक या व्यवहार संबंधी परेशानियां उनके सामने खड़ी हो जाती है तो इस स्थिति में वह बेहतर तरीके से समस्या से निपटते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर अपने दादा दादी के और नाना नानी के प्रति स्नेह और आदर की भावना ज्यादा होती है, जिससे वह भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वे अकेलापन, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से कम पीड़ित होते हैं। दादा दादी या नाना नानी हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चों के पेरेंट्स उनकी कोई जिद पूरी नहीं करते हैं, ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स उनकी इच्छा पूरी कर उनको खुशी देते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स के अधिक प्यार की वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को अनसुना करने लगते हैं, उनका कहना नहीं मानते, जिससे दो पीढ़ियों के बीच गलत फैमिली बनने लगती है। इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अपने प्यार को बैलेंस रखे और बच्चों के साथ ये बात करने से बचे। पेरेंट्स कुछ
कारणों से अपने

बच्चों को कुछ चीज़ों को खाने से मना करते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को इग्नोर करते हुए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जिद पूरी करते हैं। ऐसा करना जहां उनके नाती पोतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वही ऐसा सपोर्ट उनको जिद्दी भी बना सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों में कुछ सुधार की कोशिश में उनको पनिश करने के वजह से उनकी विश पूरी नहीं करते। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को उनकी पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाने तक उनको कोई नए टॉयज और गेम नहीं दिलाते, जबकि इसके विपरीत ग्रेड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की विश पूरी कर देते हैं, जिससे बच्चों में बिना प्रयास के चीजों को पाने की आदत बन जाती है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों और बच्चों के साथ अपने रिश्ते को भरपूर जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। विद दिस वी कंक्लूड आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लर्न है। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम। बाय फ्रॉम योर आरजे चेतन। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 102.2 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियाँ भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
0: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान

0: के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
1: अजीत जी, मैं इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: निमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
1: अच्छा, तो ये बात है?
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो 3-4 यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई। लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की, वो ये बात थी उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ बिमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात। विमलेश जी, मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चों को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी, और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई।

0: एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
1: माला, यह तुम्हारे लिए है।
0: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
3: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है, रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तब मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं

0: कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
1: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोग्ना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
2: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
3: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
2: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाए के?
3: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
2: ना जाने क्या होगा इसका।
3: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
2: अरे वो सब तो ठीक है, पर
3: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
0: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
4: ऐसे ऐसे
5: झूठ मारना।
4: सैम है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं। सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
5: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
4: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
6: कैसा प्रयोग?
4: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
5: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
4: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
5: अच्छा
4: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।
3: अच्छा।
4: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
5: ठीक है।
4: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
3: घंटी भी?
4: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
4: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
6: हाँ हाँ।
4: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
6: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
5: अरे वाह, अरे वाह,
6: क्या बात है! मार्कोनी, क्या क्या बात है!
5: अरे ये तो जादू की तरह लगता है।
3: वाह, क्या बात है!
5: अरे वाह,
4: सिग्नल मिला?
5: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
0: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक

0: घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
1: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
0: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: ये क्या? ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है!
0: पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।

0: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
1: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
0: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
1: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
2: ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
3: अरे अरे भागो भागो बाहर निकलो, भागो डैम की ओर भागो।
4: ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है। शांत
2: हो जाइए, शांत हो जाइए। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
4: हेडपोर्ट कितनी बड़ी है। अरे बचाओ, अरे
2: जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेरे।
5: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
2: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। सेव टाइटैनिक,
5: निकलो।
2: शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेड लाइफ सेवर भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
5: जल्दी जल्दी करो,
2: जीवन रक्षक नावों के नीचे उतारो। लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
6: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
1: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
0: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
1: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You're really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं होता।
3: मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूं

0: जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
1: बिल्कुल।

0: 21 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ

0: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
1: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
5: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
6: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
5: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
6: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
5: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
6: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
5: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
3: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा उद्योग में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वीवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध है जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास

0: चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: आओ सुनते हैं एक गीत। अखियों के झरोखों से फिल्म दाए गीत हेमलता दी आवाज, बोलते संगीत रविंद्र जैन दे।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व का अग्रणी ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चमकौर साहिब के नजदीक गुरुद्वारा साहिब अमर शहीद बीबी शरण कौर जी में नतमस्तक हुए। देश और दुनिया में सुख शांति और आपसी भाईचारे के लिए अरदास की। हथनी कुंड बैराज में मॉक ड्रिल के दौरान डूबे सेना के दूसरे जवान का शव हांसी नहर से मिला। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने समन्वित और केंद्रीय हितधारक सहभागिता की जरूरत पर बल दिया और भारतीय डाक विभाग दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत डाक टिकट संग्रह के रुचि रखने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व का अग्रणी ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। ये उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। श्री गडकरी ने भारत के नए कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम ने परीक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के रूपनगर जिले में चमकौर साहिब के नजदीक रायपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब अमर शहीद बीबी शरण कौर जी में माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने देश और दुनिया में सुख शांति, समृद्धि तथा आपसी भाईचारे के लिए अरदास की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े साहिबजादों और शहीद सिंहों के अंतिम संस्कार की सेवा का साहसपूर्ण दायित्व निभाने वाली अमर शहीद बीबी शरण कौर जी का बलिदान संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बीबी शरण कौर जी की स्मृति में एक ऐतिहासिक द्वार के निर्माण हेतु 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने लोगों से गुरुओं के बताए सेवा, त्याग व सत्य के मार्ग पर चलने और बलिदानियों से साहस की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री लखनऊ स्थित डेरा बाबा उम्मीद गिरिजी भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मीडिया द्वारा आने वाले चुनाव में राजनीतिक गठबंधन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा,
2: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने हिमाचल प्रदेश दौरे के दौरान ऊना स्थित बाबा बालजी आश्रम पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोटला कलां स्थित प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख शांति व समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पवित्र स्थल राधा कृष्ण की भक्ति, सेवा भाव और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र है।
3: ये केवल मंदिर नहीं बल्कि ये बाबा बाल जी की अध्यात्मिक साधना ते सेवा परंपरा और विकुदा ये विकसित केंद्र है इन्हों उस रूप में इतनी बड़ी पहचान है। ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति रासलीला और श्री भगवत कथा भजन कीर्तन और सत्संग जैसे आयोजन इस पवित्र स्थल तो ये नियम निर्मित रहते ने।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हथिनीकुंड बैराज में मंगलवार शाम मॉक ड्रिल के दौरान डूबे सेना के दो लापता जवानों में से दूसरे जवान का शव भी मिल गया है। उसका शव करीब 200 किलोमीटर दूर जींद के अमर रेहड़ी गांव के पास हांसी ब्रांच नहर में मिला। मृतक जवान की पहचान महाराष्ट्र निवासी पैराशूट रेजिमेंट के प्रथम बटालियन के विशेष बल के लांस नायक आर्यन एनपी पाटिल के रूप में हुई है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हथिनीकुंड बैराज में चिनूक हेलीकॉप्टर से यमुना नदी में खड़ी नाव पर कूदने के अभ्यास के दौरान तेज बहाव के कारण नाव पलट गई थी। हादसे में तीन जवान तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए थे जबकि दो जवान लापता हो गए थे। एक जवान का पहले ही बरामद कर लिया गया था। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रित हितधारक सहभागिता के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों और सचिवों तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों ने भाग लिया। बैठक के दौरान श्री यादव ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वित और केंद्रित हितधारक सहभागिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का आग्रह किया। हिसार जिले के गांव पायल में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में आज वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने पौधारोपण किया। श्री राव नरबीर सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल मजबूत अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर स्वास्थ्य भी जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने गांव के विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। भारतीय डाक विभाग डाक टिकट संग्रह में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना चला रहा है। इसके तहत कक्षा 6 से 9 तक के मेधावी छात्रों को 6,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अम्बाला के मुख्य डाकघर के प्रवर डाकपाल प्रभात गोयल ने बताया कि हरियाणा डाक परिमंडल से कुल 40 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।
4: पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 40 बच्चों को स्कॉलरशिप अभी मिलेगी। सिर्फ कुछ नहीं करना, छोटा सा है जो अप्लाई करेगा एग्जाम के लिए उसको एक फिलेटली क्लब का मेंबर होना जरूरी है, जो 200 रुपए

0: अकाउंट खुल सकता है, उसके बाद वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और एक छोटा सा एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप, जो सिंडिकेट 40 रहेंगे पूरे हरियाणा के अंदर, उनको जो है 6,000 रुपए एनुअल स्कॉलरशिप देगा डाक विभाग।
1: हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने आज रोहतक के नागरिक अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ओपीडी, लेबर रूम, दवा काउंटर और शौचालयों की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखे जाने की शिकायत मिलने पर उन्होंने खामियों में सुधार के निर्देश दिए और इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। इससे पूर्व उन्होंने जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर क्षेत्र में महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। भिवानी स्थित हनुमान गेट के जोहड़ी धाम मंदिर में इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व धूमधाम और भव्य रूप से मनाया जाएगा। मंदिर के महंत बाबा चरणदास ने आज तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया कि 4 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले इस उत्सव में 20 स्कूलों के लगभग 500 बच्चे और हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल लीलाएं, रासलीला, गीता पाठ, महाआरती और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व का अग्रणी ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चमकौर साहिब के नजदीक गुरुद्वारा साहिब अमर शहीद बीबी शरण कौर जी में नतमस्तक हुए, देश और दुनिया में सुख शांति और आपसी भाईचारे के लिए अरदास की। और हथनी कुंड बैराज में मॉक ड्रिल के दौरान डूबे सेना के दूसरे जवान का शव हांसी ब्रांच नहर से बरामद हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब दे बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर का कहना कि बाल विवाह नूं रोकना समुचे समाज की सांझी जिम्मेवारी। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारां नाल किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब दे राजपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया वालों अज नगर निगम चंडीगढ़ की स्वच्छ वार्ड रैंकिंग 2026 पहलकदमी की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब सियासी कारण करके पछड़ गया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दो व्यक्तियों को हथियार ते गोली सिक्के समेत गिरफ्तार करके एक गैर कानूनी हथियार सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया। औरतों के क्रिकेट विच अज भारत का मुकाबला 2020 एशिया कप के अपने दूजे ग्रुप ए मैच विच हांगकांग नाल होगा। हुण खबरां विस्तार नाल। सूबे विचों बाल विवाह वर्गी समाजक कुरीति का पूर्ण खात्मा करने लिए किए जा रहे यत्नां तहत समय सिर की गई प्रभावशाली कार्रवाई सदका पंजाब विच पंज बाल विवाहां नूं सफलता नाल रोकिया गया है। इस बारे जानकारी दिंदिया सूबे दे समाजिक सुरक्षा स्त्री ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह नूं रोकना केवल सरकार दी ही नहीं सगो समुचे समाज दी सांझी जिम्मेवारी है। उन्हां लोकां नूं अपील कीती कि जेकर उन्हां नूं अपने आले दुआले किते भी बाल विवाह होण दी जानकारी मिलती है तां उह तुरंत चाइल्ड हैल्पलाइन 1098 ते सूचना देण जां आपणे नेड़ले बाल विवाह रोकथाम अफसर नाल संपर्क करन तां जो समय सिर दखल दे के किसे बच्चे दा भविख सुरक्षित कीता जा सके। हैल्पलाइन दा नंबर एक बार फिर सुन लो 1098। उन्हां इह वी दस्सिया कि बाल विवाहां दी रोकथाम लई पंजाब सरकार वल्लों सूबे भर विच लगातार जागरूकता मुहिमां चलाईआं जा रहीआं ने। उन्हां कहा कि बच्चियां दे अधिकारां नाल किसे वी तरहां दा समझौता बर्दाश्त नहीं कीता जाएगा अते बाल विवाह वर्गी गैर कानूनी प्रथा नूं किसे वी कीमत ते पनपण नहीं दित्ता जाएगा। उन्हां कहा कि पंजाब सरकार बच्चे नाल संबंधित हर मामले विच बिल्कुल वी बर्दाश्त ना करन दी नीति ते अमल कर रही है। उपराष्ट्रपति अते पंजाब यूनिवर्सिटी दे एक्स ऑफिशियो चांस

0: सप्लाई कर रहे सन। डीजीपी ने कहा कि इस मामले विच होर जांच की जा रही है। अमृतसर बॉर्डर रेंज के नवे आईजी गुरप्रीत सिंह पुल्लर ने अज अपना अहुदा संभाल लिया है। अहुदा संभालने तो बाद मीडिया नाल गलबात करते हैं आईजी पुल्लर ने बॉर्डर रेंज विच नशियां संगठित अपराध और दहशतगर्दी विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की गल कही। उन्होंने कहा कि नशियां के कारोबार और संगठित अपराध से काबू पाना पुलिस दियां प्रमुख तरजीहां विच रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बॉर्डर रेंज एक बेहद संवेदनशील इलाका है क्योंकि इसका पाकिस्तान नाल लगता लंबा सरहदी खेतर है। इस तो अलावा दरियाई बेल्टा ते जम्मू कश्मीर ते हिमाचल प्रदेश नाल लगते इलाकों विच भी सुरक्षा नूं लैके पूरी ऑपरेशनल तैयारी रखी जाएगी। पंजाब विधानसभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवा ने सूबे में उसारे जा रहे 3100 खेड मैदान से दूजे खेड अधीन नौजवानों को खेडों लिए बेहतर सहूलत मुहैया कराने के उद्देश पिंड वाड़ा दराका और पिंड फिडे कलां कोट कपूरा विखे बनाए गए मुख्यमंत्री खेड मैदान का उद्घाटन किया। औरतों के क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला 2020 एशिया कप के अपने दूजे ग्रुप ए मैच में हांगकांग नाल होगा। यह मैच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। आखिर च खास खबरां। पंजाब के बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर का कहना कि बाल विआह नूं रोकना समुचे समाज की सांझी जिम्मेवारी। कहा बच्चों के अधिकारां नाल किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया वालों आज नगर निगम चंडीगढ़ की स्वच्छ वार्ड रैंकिंग 2026 पहलकदमी की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब सियासी काटा करके पछड़ गया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दो व्यक्तियों को हथियार ते गोली सिक्के समेत गिरफ्तार करके एक गैर कानूनी हथियार सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया। औरतों के क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला 2020 एशिया कप के अपने दूजे ग्रुप ए मैच में हांगकांग नाल होगा। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होगा। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। आहुन सुनदे हां प्रोग्राम समाचार दर्शन।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है फिट इंडिया अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है फिट इंडिया अभियान में योग और भारतीय व्यायाम पद्धति को लेकर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य से बातचीत। हरियाणा के विभिन्न जिलों के खेल अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर अभियान के तहत चल रही गतिविधियों को लेकर चर्चा और फिट इंडिया अभियान को लेकर आम लोगों से बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किया था ताकि व्यायाम लोगों की दिनचर्या में शामिल हो और इस अभियान से जुड़कर देशवासी स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री का मानना है कि स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की नींव है। आज देश भर में फिट इंडिया अभियान एक आंदोलन बन चुका है। हरियाणा में भी इसके अंतर्गत लगातार गतिविधियों का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता ने फिट इंडिया अभियान के तहत चल रही गतिविधियों को लेकर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य से बातचीत की।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फिट इंडिया मूवमेंट को आरंभ करना न्याय में प्रशंसनीय और लागनीय प्रयास रहा। हरियाणा योग आयोग ने फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हमने योग की प्रतियोगिताओं करवाने से लेकर योग मैराथन करवाना, योग के कॉम्पिटिशन के साथ साथ योग नियमित शिविरों का आयोजन करके जनमानस के जीवन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया है। हम स्थानीय व्यायाम जो भारतीय व्यायाम है उनको कहें और स्वदेशी खेल जैसे गतका हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, योगासन हो गया और दंड बैठक को सम्मिलित करके युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए, स्वस्थ आहार विहार दिनचर्या प्रयोग करने का संदेश दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है फिट इंडिया हिट इंडिया, फिट हरियाणा हिट हरियाणा। हरियाणा जो खेलों में सर्वाधिक मेडल भारत को लेके देता है, फिटनेस हमारे प्राथमिकता में है और हम इसको गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं।
2: हरियाणा के विभिन्न जिलों में फिट इंडिया अभियान की वजह से फिटनेस को लेकर काफी जागरूकता आई है। जींद के जिला खेल अधिकारी रामपाल हुड्डा ने कहा कि फिट इंडिया ने खेलों के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई है।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों में फिटनेस देने के लिए, लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी।

0: हरियाणा में फिट है, हरियाणा उसी पैटर्न पर शुरू कर दिया। इसके तहत साइक्लोथोन जैसे साइकिल यात्रा, फिर मैराथन वगैरह, फिटनेस के लिए गेम्स वगैरह, ये सारी चीजें की गई। लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया और हम कह सकते हैं रुचि बढ़ी है लोगों में इसको लेके, और खिलाड़ियों मोटिवेशन भी मिलता रहा है। इसके साथ ही कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ती रही है। मैं ये कहूंगा कि फिट इंडिया जो स्कीम है, जो विजन था माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो उस हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है।
1: रामपाल हुड्डा ने बताया कि इस अभियान से प्रोत्साहन के साथ साथ बच्चों में प्रतियोगिता की भावना भी बढ़ी है।
0: आज यहाँ साइक्लोथोन की या मैराथन की, इससे प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, एक दूसरे से देख के कॉम्पिटिशन की भावना जागृत होती है। देखो अंडरस्टूड है कि जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसकी उपलब्धि भी आएगी, तो इससे क्या है, इंडोरेंस की बात जो हमने की, स्पीड की बात की, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उसमें रिजल्ट भी मिलेगा, ये कन्फर्म बात।
1: श्री हुड्डा ने कहा कि फिट इंडिया प्रधानमंत्री की एक बड़ी परिकल्पना है।
0: कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बंदा फिटनेस बना के रखा है, मेडिटेशन किया, योगा कर लिया, भाग दौड़ कर ली, रनिंग कर ली, उसको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी। फिट इंडिया प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है। तो इससे क्या हुआ कि आजकल जो बच्चे हैं वो स्कूटर लेके, मोटरसाइकिल लेके कारों में ग्राउंडों में जाते थे, तो इनको प्रोत्साहन मिला कि भाई हम खुद रनिंग करते हुए जाएंगे, तेल का बचाव हो गया, उससे बच्चे में अपने आप फिटनेस आ गई, कई चीजें हैं जिससे इसको फायदा मिला है।
1: कुरुक्षेत्र में जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इस 29 तारीख को फिटनेस इंडिया अभियान के 7 साल पूरे होने पर एक नए जोश के साथ युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है।
2: 29 तारीख इसमें पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 2000 के लगभग जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वे डेली अभ्यास करते हैं, अलग अलग गेमों के खिलाड़ी हैं, आम नागरिक भी इस मूवमेंट से जुड़ सकते हैं और जो भी उनकी मदद होती है किसी टेक्निक की या कोई और उनको कोई परेशानी होती है, हमारे कोचेज जो हैं उनको बताते हैं कि एक्सरसाइज किस प्रकार करनी है, इस एक्सरसाइज से उनको बेनिफिट कितना होता है, या जो भी वो पूछना चाहते हैं उनकी जिज्ञासाएं जो है हम हमारे प्रशिक्षक जो है बखूबी दूर करते हैं और हमारे पास कोचेज भी राष्ट्रीय स्तर के हैं। इस मूवमेंट के तहत हमने 29 तारीख को हॉकी का मैच रखा था और एक खो खो का मैच रखा हुआ था, उसमें 29 तारीख को ही हमने वॉलीबॉल अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग हमने कंपटीशन बच्चों के आपस में रिक्रिएशन टाइप जो है कराए थे ताकि खेलों से वे जुड़े रहें और खेलों के महत्ता के बारे में जाने।
1: श्री मनोज कुमार ने कहा कि सभी को खेल और व्यायाम को कुछ समय जरूर देना चाहिए।
2: जो खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट है, इसके तहत मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को स्पोर्ट्स के लिए कुछ न कुछ समय तो जरूर निकालना चाहिए, चाहे आधा घंटा निकाल लें। वो फिट इंडिया मूवमेंट तभी सार्थक होगा जब हमारे हॉस्पिटल्स कम खुलेंगे और आम पब्लिक को जो है ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ होगा, बच्चे नशे से दूर रहें। हर संडे को हम साइकिल यात्रा निकालते हैं, उसमें जगह जगह जो पॉइंट्स हैं बच्चों को बताते हैं कि वे नशे से दूर रहना, उसमें एक रहता है कि साइकिल पर चलेंगे फिट रहेंगे, एक दिन तो कम से कम सभी नागरिकों को साइकिल अवश्य चलानी चाहिए।

0: अम्बाला में जिला खेल अधिकारी राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि फिट इंडिया अभियान ने युवाओं को नशों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुरुआत की गई थी, जिससे कि हमारा जो युवा है स्वस्थ रहे, फिट रहे और नशे से दूर रहे। अम्बाला में हमारे पास लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हर रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, उनको हम फिट रहने की प्रेरणा देते हैं तथा वो खेल प्रतियोगिताओं जिनमें वो भाग लेते हैं उससे फिट रहते हैं और जगह उनके साथ रहने वाले उनके खिलाड़ी दोस्त अभिभावक सब फिट रहते हैं और ये मूवमेंट की शुरुआत होने के कारण ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हैं। अम्बाला में 4 ब्लॉक है यहाँ पे, अम्बाला 1, 2 और नारायणगढ़ बराड़ा, तो इन सभी में मिला के हमारे 9 स्टेडियम है और टोटल 23 कोचेज हैं विभिन्न खेलों में। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल का है, चाहे हम बात करें जिमनास्टिक हॉल की, स्विमिंग पूल की, एथलेटिक ट्रैक की, हॉकी, एस्ट्रोटर्फ की, इन सभी खेलों में सरकार द्वारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया।
0: श्री राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि अम्बाला

0: बांदा जिले में फिट इंडिया अभियान के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं।
1: फिट इंडिया मूवमेंट का अम्बाला में बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल कर आ रहा है। बहुत से खिलाड़ी स्टेडियम में हमारे साथ आकर जुड़े हैं। हमने बहुत रेगुलर लेवल पे मैराथन, साइक्लोथन जैसे इवेंट्स करवाए हैं, जिससे कि जितना भी युवा हमारे साथ जुड़ा है उनको फिल्म प्रेरित है और डिफरेंट गेम्स में जैसी जिसकी प्रतिभा है वह अपना प्रतिभा उन गेम्स में दिखाता है तथा समाज को भी फिट रहने का संदेश देता है।
0: पंचकुला के जिला खेल अधिकारी राजबीर सिंह रंगा ने बताया कि पंचकुला में फिट इंडिया अभियान के तहत कई तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
2: फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पंचकुला में कई तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जैसे कि संडे ऑन साइकिल, साइक्लोथोन, वॉकथोन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सभी तरह की खेल हमारे स्टेडियम में व पूरे जिले में खेले जाते हैं, उनकी प्रतियोगिता करवाई जाती है, उन खिलाड़ियों को उसमें बहुत ही लाभ मिल रहा है। योगा कॉम्पिटिशन भी हमारे विभाग द्वारा कराए जाते हैं और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं जैसे कि खेल महाकुंभ, अखाड़ा प्रतियोगिता जिसमें यूथ बढ़ चढ़कर भाग लेता है, और राहगिरी प्रोग्राम भी कराया जाता है जिसमें सेंट्रल जो पार्क में सभी खिलाड़ी एकत्रित होते हैं, आम जनता को भी उस कार्यक्रम में जोड़ा जाता है जिससे कि आम जन को भी उसका बहुत ही लाभ मिल रहा है।
0: फिट इंडिया से लाभान्वित होने वाले कई लोगों ने आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा किए। भिवानी से दीपक मुटरेजा ने बताया कि योग और प्राणायाम से उन्हें स्वास्थ्य में अद्भुत लाभ मिला है।
3: मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूं और काफी वर्षों से जो है प्राणायाम योग वगैरह मैं करता हूं और काफी फायदा जो है मुझे इस योग से मिला है। काफी दिक्कतें जो है शरीर में पहले आती थी लेकिन इन दिनों मैं बिल्कुल फिट हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ने के बाद काफी फायदा हुआ है।
0: पानीपत से ज्ञानेन्द्र नारायण ने बताया कि वे खुद और अपने बच्चों को भी इस अभियान के तहत चलने वाली गतिविधियों से जुड़े रहते हैं।
4: प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के युवाओं के स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य के लिए चलाया जा रहा है फिट इंडिया मूवमेंट बहुत ही सराहनीय कदम है। बेहतर है कि वो योग, खेल और स्वास्थ्य जैसी जीवन शैली से जुड़े ताकि उनका शारीरिक, मानसिक हर तरफ से विकास हो। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि भारत का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हमारा युवा सशक्त बने, इस तरह एक स्वस्थ और मजबूत भारत का निर्माण होगा। मैं भी छुट्टी के दिनों में और सामान्य दिनों में भी साइक्लोथोन जैसी कार्यक्रम में भाग लेता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत और फिट रहेगा भारत।
0: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी और प्रस्तुति सहायक सोनिया।
5: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम समाचार दर्शन FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। आओ हुण सुणदे हां कुछ पंजाबी गीत। सब तो पहला तुहानू सुनवा रहे हां सुरेंद्र कौर अते प्रकाश कौर दी आवाज़ विच ए गीत।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਇਹ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5 और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार मजबूत लचीला भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: हुण तो कुछ ही पलों दे विच तुसी सुनोगे प्रोग्राम जयमाला जो के विविध भारती मुंबई के केंद्र तो रिले किया जाएगा।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का शुरुआत कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत से।

0: महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजों में फना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रसून जोशी ने इसे लिखा था और जतिन ललित ने धुन बनाई थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिवर माउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: मिश्रा का लिखा हुआ ये गीत अभी आपने सुना, सलीम सुलेमान ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। ये बंटी और बबली फिल्म का गीत है, आवाजें सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की।

बूटी और बबली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला की आवाजों में बिग ब्रदर फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं अनिल पांडे और संगीतकार आनंद राज आनंद।

0: श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला की आवाजों में अनिल पांडे का लिखा ही गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद राज आनंद संगीतकार थे। बिग ब्रदर फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
2: जो गनफो ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
1: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।

0: यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
0: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की,

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। जयमाला कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: Gems of India Challenge.

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में उमराव जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिया चले जा चले।

एमजी शिवकुमार लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल से। संगीतकार ए आर रहमान थे। इसी गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: खेल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका शराफत, निर्देशिका अचला नागर।
1: ये क्या हो रहा है? क्यों बे, बोलता क्यों नहीं? चल खड़ा हो जा।
2: पैंट पैंट फट गई है साहब।
1: टांग तो नहीं टूटी? चल खड़ा हो। अरे ये क्या, खून निकल रहा है नाक से?
2: हाँ साहब, बहुत मारा पब्लिक लोग ने।
1: मारते नहीं तो क्या पूजा करते तेरी? किधर है पाके, निकाल। ये रहा। किसका है भाई ये बटुआ?
3: मेरा है साहब, मेरा है, मेरा है साहब।
1: आपका? क्यों भाई छोकरे, इन्हीं साहब का पाकिट मारा था?
2: साहब पहली बार ही किया ऐसा धंधा।
1: बस बंद लीजिए साहब, ये बटुआ लीजिए अपना।
2: सही बोलता हूँ साहब, सच्ची बोलता
1: हूँ। चुप चुप, एकदम चुप। हाँ मिस्टर, बटुआ खोल कर देख लीजिए, सब ठीक है ना?
3: ठीक ही होगा साहब, इसको बाहर निकालने का मौका ही कहाँ दिया लोगों ने?
4: अजी बताओ, मैंने देख लिया और वही पकड़ लिया कमीने को रंगे हाथों।
3: ससुरा भाग लगा था हाथ छुड़ा के, वो तो मैंने एक दिया घुमा के।
1: ओके ओके ओके मिस्टर, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा।
3: पुलिस स्टेशन जाने दो साहब, मेरे को मेरा बटुआ मिल गया, अब बेकार लफड़ा करने से क्या फायदा?
1: क्यों, रिपोर्ट नहीं लिखवानी तुम्हें?
3: नहीं बाबा, आपने को पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं, काम धंधे को पहले ही बहुत कोड़ी हो गया।
1: चलो चलो जाओ, भागो, चलो जाओ,
5: मैं भी जाऊं साहब।
1: ए तू किधर जाता है? चल थाने।
5: माफ कर दो साहब, पहले ही बहुत मार लिया पब्लिक ने, ये देखो सारी कमीज में खूनी खून है साहब।
1: खून तो बेटा मैं नहीं छोड़ूंगा तेरा, लोगों की जेबों को अपना बैंक समझ रखा है।
5: साहब साहब, पहली बार ही किसी की जेब को हाथ लगाया था साहब।
1: पहली बार किसी की जेब को हाथ लगाया कि पहली बार पकड़ा गया?
5: सच्ची बोलता हूँ साहब, बाप कसम पहले कभी ऐसा धंधा नहीं किया साहब।
1: बाप की झूठी कसम खाता है। नाम क्या तेरा?
5: रतन।
1: बाप का नाम?
5: जी रामचरण दास।
1: रहता किधर है?
5: वो रेलवे लाइन के बाजू में जो नाला है उधर।
1: वो मजदूर बस्ती में?
5: हाँ साहब,
1: मजदूर बस्ती में। क्या नाम बताया बाप का?
5: जी रामचरण दास।
1: ये वो तो नहीं जिनका एक पैर कटा हुआ है?
5: हाँ साहब, दो साल पहले मिल की मशीन में आके कट गया था साहब।
1: मालूम है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को। वही ना जो बस्ती में भजन गाते हैं, भगत जी।
5: हाँ साहब, कोई कोई भगत जी भी बोलते हो?
1: कोई कोई नहीं, सारे लोग भगत जी कहते हैं। और तू भगत जी जैसे शरीफ आदमी का बेटा और जेब कतरा। चल मेरे साथ।
5: किधर को साहब?
1: अबे चल।

0: बैठ जाओ उधर।
1: साहब ये तो
0: ले पानी पी।
1: जी साहब।
0: हाँ हाँ पानी पी और मुंह भी धो ले साथ में।
1: साहब ये तो किसी का घर है क्या?
0: किसी का नहीं, मेरा घर है। तू भगत जी का बेटा है इसलिए तुझे थाने नहीं ले गया। हाथ मुंह धोकर पानी पी और इधर बैठ जा। अच्छा। मैं अभी आता हूँ।
1: अच्छा सर।
0: ये ले।
1: ये क्या साहब?
0: कमीज है और क्या, तेरी कमीज फट गई है ना, जल्दी इसे पहन ले।
1: फटी तो पैंट भी है साहब।
0: हाँ हाँ लेकिन तेरे नाप की कोई पैंट तो है नहीं मेरे पास। अच्छा ठहर, क्या क्या पजामा लेके आता हूँ।
1: आप बहुत अच्छे हैं साहब।
0: अच्छा अच्छा कुछ नहीं बेटे, ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि तू भगत जी का बेटा है और मैं भगत जी की बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हारी बस्ती में सबसे शरीफ आदमी है वो। ये ले पजामा पहन ले, चाय पिएगा?
1: जाने दो साहब।
0: हाँ हाँ जाने तो दूंगा, पहले तुझसे जरा बातें तो कर लूं। तू सबसे बड़ा लड़का भगत जी का?
1: नहीं साहब, मेरे से बड़ा एक और था।
0: था मतलब?
1: वो भाग गया साहब, जब बाप का पैर कटा और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो एक दिन वो चुपके से भाग गया।
0: क्या कलयुग का श्रवण कुमार था। उसके बाद तू है?
1: जी नहीं, एक बहन है मेरे से बड़ी।
0: शादी हो गई उसकी?
1: हो गई थी, मगर उसका आदमी दारू का धंधा करता था साहब, इसलिए पकड़ा गया। साल भर की हो गई।
0: वाह वाह वाह शाबाश, ये सारे नमूने भगत जी के भाग में बदे थे। आजकल बहन कहाँ है?
1: हमारे घर में है साहब, वो छोटे छोटे दो बच्चे लेकर कहाँ जाती अकेली।
0: तीसरा नंबर तेरा है
1: जी।
0: और तेरे बाद?
1: मेरे बाद एक भाई है, उसके पीछे तीन बहने हैं।
0: भाई क्या करता है?
1: कुछ नहीं साहब।
0: कुछ नहीं तो मतलब सब लोग भगत जी की छाती पर बैठकर खाते हो। माँ, तुम्हारी माँ कुछ काम करती है?
1: बर्तन भांडे मांजने जाती है साहब, दो तीन घरों में।
0: भगत जी को मिल से मुआवजा भी तो मिला होगा पैर कटने का?
1: हाँ साहब, उसमें से थोड़ा सा बहनोई के मुकदमे में खर्च हो गया और बाकी मंदिर को चढ़ावे में दे दिया
0: भगत जी ने।
1: हाँ साहब।
0: वाह वाह वाह, क्या श्रद्धा है, क्या देवता आदमी है। जिनकी तिजोरियां भरी होती है उनकी जेब से तो चवन्नी तक नहीं निकलती मंदिर के नाम पर। अरे भगत जी है सो, मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे देवता के घर राक्षस कहां से आ गए। एक वो है जिनका मुंह खुलता है तो जबान से राम राम निकलता है, और एक तुम हो जो चोरी के इल्जाम में सड़कों पर जूते खाते फिरते हो। शर्म आनी चाहिए, अब सिर झुकाकर क्या बैठा है? उधर देख, उधर देख, वो दीवार पर तस्वीर देखता है, जानता किसकी है? मेरे पिताजी की है। मैं 3 बरस का था तभी चल बसे थे, उनकी सूरत बस इस तस्वीर में ही देखी है मैंने। सिवाय इस तस्वीर को माला लगाने के और कोई सेवा नहीं कर सका मैं अपने जन्मदाता की। इतना तरसा हूं जिंदगी भर बाप की परछाई को, और बाप ही क्या, भाई बहन भी नहीं, बस मां ने किसी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। लेकिन तुम मां बाप भाई बहनों की कदर क्या जानो, सब दिया है ना राम जी ने, इसीलिए आज बेखट के बाप की इज्जत को बाजार में उछलता है। सोचता हूं भगत जी को पता चलेगा तो उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। कैसे तू इतने भले आदमी के मन को चोट पहुंचा सकता है?
1: साहब एक बात बोलूं?
0: क्या बात है?
1: आप मेरे बाप को इतना शरीफ आदमी मालूम है क्यों बोलते हो?
0: क्यों?
1: क्योंकि वो आपका बाप नहीं है।
0: क्या मतलब?
1: हाँ साहब, क्योंकि वो मेरा बाप है।
0: क्या बकवास है
1: साहब, काले आदमी के नजदीक सांवले आदमी को बैठाओ तो वो गोरा ही दिखेगा।
0: तू कहना क्या चाहता है?
1: मैं आपकी नजर में चोर बदमाश हूँ साहब, पाकेटमार हूँ, इसीलिए आपको मेरा बाप बहुत शरीफ दिखाई देता है। मेरे कसूर के लिए तो पुलिस है, थाना है, जेल है, और ये नहीं तो सड़क पर जूते मारने के लिए पब्लिक है, मगर मेरे बाप के कसूर के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है।
0: दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? उस संत आदमी के खिलाफ क्या बकवास कर रहा है? खिला फिला कर इसलिए जवान किया तुझे?
1: जवान किया? कैसा जवान किया, वो तो आपको दिखता ही है साहब, बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, न खाने का ठिकाना न रहने का, जिधर जाता हूं लोग दुत्कारते हैं, नौकरी मांगता हूं तो गाली मिलती है साहब, जेब काटता हूं तो जूते मिलते हैं, किसी को जवानी बोलते हैं आप?
0: व्हाट नॉनसेंस, करतूतें तेरी और दोष भगत जी का। जब माँ बाप ने जन्म दिया है तो क्या जिंदगी पर खिलाने का ठेका भी ले लिया?
1: लेकिन साहब मैं पूछता हूं काहे को दिया जन्म, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो।
0: शट अप, शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते? माँ बाप की इज्जत करना तो दूर, उनके खिलाफ जो मुंह में आगे बकेगा।
1: माफ करना साहब, माफ करना साहब, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूं साहब, बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल, जो दिल में आता है बिना सोचे बोल देता हूं साहब।
0: लेकिन तेरे दिल में इतना मैला भर कहां से गया?
1: धीरे धीरे करके जमा हो गया है साहब, जब से हो संभाला तब से बराबर जमा हो रहा है साहब।

0: गरीब आदमी हूं ना, इसलिए होश जल्दी ही संभाल लिया था। जब मैं 8-10 बरस का था साहब, तब एक रात अचानक बड़ा हो गया था मैं। मैंने अपने माँ बाप की बातचीत सुनी थी। उस रात अंधेरे में जो कुछ सुना था साहब, वो आज भी याद है मुझे, क्योंकि उसी की वजह से जिंदगी में आज तक अंधेरा है साहब।
1: अरे सुनती है रतन की अम्मा, आज वो मोटर वाले सेठ लोग फिर आए थे। अरे वही बिना संतान वाले।
2: कब?
1: संजय को मैंने गली के नुक्कड़ पर ही रोक लेना।
2: फिर वही बात कह रहे होंगे।
1: और क्या, साथ में वो समाज सेवक भी था।
2: लेकिन जब हमने एक बार कह दिया कि हम अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं है, तो बेर बेर आने की जरूरत क्या है? अरे कहीं दूध पूध भी बेचे जावे हैं।
1: अरे कलयुग है ये कलयुग, दूध का बिकना तो देख ही रही है रोजाना, पूत का बिकना मैं देखा है आज।
2: क्या मतलब?
1: अरे वो गिरधरलाल नहीं है? अरे वो जो मिल के बॉयलर में काम कर रहे है।
2: हाँ हाँ, वही जो राशन की दुकान के ऊपर रह रहे है।
1: हाँ हाँ वही।
2: अच्छा क्या हुआ उसको?
1: अरे मती परस्त हो गई है उसकी, और का बेटे को बेच दिया है उसने।
2: मतबल वो मोटर वाले सेठ उसका लड़का ले गए?
1: और का, इतने दिनों तक अपने रतन के पीछे पड़ रहे, अब कोई पूछे भाई तुम्हारे बाल बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करें? पर हमारे ना करने से कहा समाज सुधारक ने गिरधर लाल का लड़का दिलवा दिया उनको। श्री राम श्री राम।
2: कौन सा वाला लड़का दिया है?
1: अरे वही जो अपने रतन के बराबर है, 8-9 वर्ष का।
2: हाय हाय, कैसा कलेजा है माँ बाप का, पैदा करके संतान और लोगों को सौंप दी।
1: जब ही तो कहता हूँ कलयुग है ये कलयुग, माँ बाप लड़का औरों को सौंप कर कह रहे हैं इसी में लड़के की भलाई है, सुख चैन से रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहरेगा, खूब पढ़ेगा और जिंदगानी बन जाएगी उसकी।
2: मतबल लड़के की जिंदगानी ही सब कुछ हो गई, माँ बाप का फर्ज तो कुछ हुआ ही नहीं।
1: अरे उनसे पूछो तो यही फर्ज है जो उन्होंने किया है।
2: और तो और, जो कल को लड़का वापस असली माँ बाप के पास लौट आया तो?
1: ऐसा थोड़े ही होता है, पक्की कानूनी कार्रवाई हुई है, अब तो लड़का गया सेठ का वंश बढ़ाने।
0: सेठ का वंश बढ़ाने मैं भी जा सकता था साहब, मगर कोई पूछे आज 12-15 बरस बाद मैं क्या हूं? एक चोर। मैं क्यों हूं? क्यों? आधा भूखा हूं, आधा नंगा हूं, अनपढ़ हूं। जब ये सवाल अपने पाप से करता हूं कि क्यों पैदा किया मुझे, तो बताओ कौन सा पाप करता हूं साहब? साहब आप तो बहुत भारी पढ़े लिखे समझदार सरकारी अफसर हैं, आप ही बताइए किसका बाप शरीफ है, मेरा या उस लड़के का जो आज सेठ का लड़का बनकर ठाट से मोटर में घूमता है? उसके बाप ने उसे जिंदगी दी, अब मेरे बाप ने क्या दिया मुझे? कहां धकेला मुझे? सड़क पर लोगों के जूते खाने के लिए। मेरा बड़ा भाई घर से भागता नहीं तो और क्या करता? अभी तो देखना साहब, मुझको एक दिन जेल हो जाएगी, छोटी बहनें बड़ी होकर ही उसके साथ भाग जाएंगी। अभी तो बाप की सिर्फ टांग ही कटी है साहब, एक दिन नाक भी कटेगी। अब शायद उस दिन भी मेरे बाप को शरीफ आदमी कहेंगे साहब, मगर मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि शराफत बच्चे पैदा करते में नहीं है साहब, बच्चों की परवरिश करते में है। परवरिश करते में।

अभी आपने लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका सुनी शराफत। निर्देशिका थी अचला नागर। ये नाटिका विविध भारती की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों को। नमस्कार, सविता सिंह का।

जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया और पूजा की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। जब तक है जान फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राघव माथुर, शिल्पा रॉय की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, ए आर रहमान के तर्ज थे। बार बार देखो फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं अमर आरशी, बादशाह और नेहा कक्कर की आवाजों में।

0: बार बार देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमर आरशी नेहा कक्कर बादशाह की आवाजें थी। गीतकार थे अमरीक सिंह और कुमार, संगीतकार जैसलीन रॉयल।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: अक्सर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को मारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक,

0: और एक प्राध्यापक। तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
2: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
1: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
2: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
2: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई

0: की मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
4: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
5: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
4: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान

0: दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी

0: में की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत घर आंखों से छलक जाए तो लफ्जों की जरूरत है क्या? आंखें बंद कर लेने से ये जज्बात थम जाएंगे क्या? ये तो मोहब्बत है, अपनी जिद पर अड़ी रहेगी जनाब। लाख कोशिशें कीजिएगा मगर छिपाने से ये छिप जाएंगी क्या?

मोहब्बत का इजहार तो कर दूं, मगर डर लगता है कहीं तुम खफा तो ना हो जाओगे। चलो इकरार कर भी दिया अगर, तो डर लगता है कहीं नखरे तो ना दिखाओगे। नखरों को तुम्हारे मैं सह भी जाऊं, पर डर लगता है दिल चुरा के मेरा कहीं तुम बदल तो ना जाओगे।

न जाने उन्हें हमारी सूरत पसंद आई या सीरत, न जाने हमारे बोलने का अंदाज पसंद आया या लफ्ज, बेवजह तारीफ करना आदत सी लगती है उनकी। कहते हैं हर धड़कन पर नाम है तुम्हारा, चाहो तो पढ़ लो हर लफ्ज।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: अंतराल के बाद छाया गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार जब परवान चढ़ जाए तो फिर क्या सुबह क्या शाम, दिल गुनगुनाता है सिर्फ अपने दिलबर का ही नाम। निकाले चाहे कोई लाख बुराई, करे कितना ही बदनाम, हंसते हंसते सह जाते हैं आशिक हर खुशी हर गम का जाम।

अचानक जब तुम यूं मेरी नजर के सामने आ जाते हो, दिल की धड़कन कुछ इस कदर बढ़ जाती है मानो सारी जिंदगी एक पल में सिमट गई हो। तुम्हारे साथ बिताए चंद पलों को याद करती हूँ तो लगता है मानो ये जिंदगी उन चंद पलों में ही थम गई।

से मिलने की कसक ने इस कदर बेताब किया कि भीगी भीगी रातों में भी जलने लगा मेरा जिया। अब अगर तुम आ जाओ तो चैन आ जाए, मेरा दिलदार आ जाए तो करार आ जाए।

सुना रही हूँ प्यार की कहानी। प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा। मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

0: आज के छाया गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

0: चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मर क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम छाया गीत। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। हुण पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। केंद्रीय सड़क आवाजाई अते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत विच नवीनता, गुणवत्ता अते प्रतियोगी कीमत दे जरिए दुनिया दा मोहरी ऑटोमोबाइल उद्योग बनन दी समर्था है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चमकौर साहब नेड़े गुरुद्वारा साहब अमर शहीद बीबी शरण कौर जी विखे मत्था टेकिया अते देश अते दुनिया विच शांति अते सद्भावना लई प्रार्थना कीती। हथनीकुंड बैराज ते मंगलवार नूं मॉक ड्रिल दौरान डुबन वाले दूजे फौजी जवान दी मृतक देह हांसी ब्रांच नहर तों बरामद कर ली गई है। दिल्ली, हरियाणा ते उत्तर प्रदेश दे वातावरण मंत्रियां ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी खेतर विच हवा प्रदूषण प्रबंधन अते नियंत्रण बारे चर्चा करन लई मुलाकात कीती। केंद्रीय वातावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तालमेल अते केंद्रित हितधारक हिस्सेदारी दी जरूरत ते जोर दिता। भारतीय डाक विभाग दीनदयाल स्पर्श योजना दे तहत डाक टिकटां इकट्ठियां करन विच दिलचस्पी रखण वाले होनहार विद्यार्थियां नूं स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। हरियाणा विच देश व्यापी नागरिक भागीदारी पहल सुधार उत्सव दीआं तैयारियां तेज हो गईआं ने। मुहिम दा मुख पड़ा जन मंथन 2 तों 31 अक्तूबर तक चलेगा। हरियाणा विच लाभकारी प्राइमरी खेतीबाड़ी सहकारी सभावां दी गिणती 33 तों वध के 51 हो गई है। सहकारी विभाग दे प्रमुख सकत्तर पंकज यादव ने कहा कि सहकारी सभावां राहीं डिजिटल नागरिक सेवावां दा विस्तार होया। कॉमन सर्विस सेंटरां वजों कम करन वाले पैक्स दी गिणती 410 तों वध के 515 हो गई है। ए सन हुण तक दीआं मुख प्रदेशक खबरां। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। श्रोतो सुरां नाल सजी शाम प्रोग्राम सुर सांझ लेके हाजिर है तुहाडी रेडियो साथन बबीता कपूर। सुर लय ते ताल नाल सजी इस महफिल दा पहला गीत पेश कर रहे हैं अलका याग्निक ते हरभजन मान दियां आवाज़ां 'च।

0: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भत्ते पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
1: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
2: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोते गीतों से सुनोगे बब्बू मान ते अलका याग्निक दिया आवाज़ें।

0: श्रोते प्रोग्राम सुरसाज दे बाकी गीत पेश करांगे इस ब्रेक तो बाद।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो चोणवे पंजाबी गीत सुरां नाल सजी शाम। प्रोग्राम दा नां है सुरसांझ। हुण पेश कर रहे हैं युवराज हंस दी आवाज़ च ए गीत।

0: में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात दे 11:05 ते 12 सेकेंड होए ने। साडी अज दी सभा हुण ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ